सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवमी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 6 बजने को है। समाचार कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट

0: में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। मनुष्य में दूसरों के प्रहार से बचने के लिए कठोर और कुटिल होने का गुण भी होना चाहिए। आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में समूह स्वरों में सुनते हैं RD सक्सेना का लिखा ये देशभक्ति गीत।

हेमंती शुक्ला की आवाज़ में संत सूरदास रचित ये भजन आपने सुना, और अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है अनूप जलोटा की।

0: श्रुति सडोली करके गाए इस भजन के साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती सुधा बाला शर्मा का है और वाचक हैं माधवी येंडे।
1: सामान्य मानव की दृष्टि अपने वर्तमान समय पर ही टिकी रहती है। वो अपने आप को देखता है और अपने भोग विलास में टिका रहता है। उसे आगत की संभावनाओं से अधिक सरोकार नहीं होता। वर्तमान के सुख का क्षण उसके लिए पर्याप्त होता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने वर्तमान को संघर्ष में झोंक देता है, क्योंकि उसे भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां नजर आती हैं, जिनका सामना संघर्ष के बिना संभव नहीं है। संभावनाओं को साकार करने और चुनौती को स्वीकार करने के लिए वर्तमान को राग रंग में नहीं डुबोया जा सकता, वरन प्रतिपल सतर्क, सावधान और सजग होकर उसका सामना करने के लिए पूर्व तैयारी में जुटना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच यही विभाजक और विभेदक रेखा है, जो दोनों के विचार में परिलक्षित होती है। व्यक्ति की दृष्टि वर्तमान के भोग भोगने पर टिकी रहती है। उसे अपना सुखमय पल स्वर्ग से भी अधिक भव्य जान पड़ता है और वो सोचता है कि ये समय कभी खत्म नहीं होगा। उसे ये सुख चिरस्थाई जान पड़ता है। वो सुख की इस रंगीन स्वप्निल छांह तले ऐसा पसर जाता है जैसे जीवन सुख का ही पर्याय हो, परंतु तरंगों की भांति सुख का पल बुलबुले के समान फट जाता है और सुख का अवसान शीघ्र ही हो जाता है। सुख के पश्चात उसे असह्य दुख आकर घेर लेता है और व्यक्ति दुख की भुजाओं में छटपटाता रहता है। इसकी चुभन पीड़ा उसे सालती है, अपने ही स्वजन संबंधी उसे पराई लगते हैं। वो अपनी पीड़ा का कारण दूसरों पर मढ़ता है और मानता है कि वर्तमान की दुर्दशा अपने कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पीड़ा उसे औरों ने दी है। वो बैठे बैठे नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है और दूसरों को भला बुरा कहता है। उसकी दृष्टि वर्तमान के सुख दुख में अत्यधिक घुली मिली रहती है। कर्म के सिद्धांत को वो समझ नहीं पाता। व्यक्ति या तो सुख में भीगा रहता है या फिर दुख से व्यथित रहता है। वो अति के दो छोरों पर गतिमान रहता है, या तो वो सुख की कल्पना में जीता है या फिर भीषण दुख को स्वतः आमंत्रित कर उसकी असह्य तपन से झुलसता रहता है। वो कभी भी इन दोनों को संतुलित करने का प्रयास नहीं कर पाता है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा रहेगा ही, अतः व्यक्ति अनचाहे अनजाने में भी इससे चिपका रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों के बीच के कारण को खोजता है और उचित प्रबंधन और समायोजन करता है। वो जानता है कि जीवन महज एक संयोग नहीं है और जो देख रहा है वही सच्चाई नहीं है, बल्कि जीवन कर्म के सिद्धांत से संचालित है। वर्तमान पल कुछ ही क्षणों में अतीत के पन्नों में सिमट जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन संभावनाओं को साकार करने के लिए वर्तमान में नई नई योजनाएं गढ़ता है, भविष्य की अच्छी संभावनाओं को तलाशने तराशने के लिए जो समय मिलता है उसे वो व्यर्थ नहीं गंवाता, वो उसका सदुपयोग करता है। जो चुनौती से भागते हैं, संघर्षों से डरते हैं, कठिनाइयों से घबराते हैं, वे अपने जीवन में सार्थक और संतोषजनक उपलब्धियों से वंचित रहते हैं। सामान्य मानव अपने वर्तमान में ही ठहर जाता है, जबकि बुद्धिमान जूझता हुआ आगे बढ़ता है। हमें सदैव जुझारू मानसिकता पैदा करनी चाहिए।
0: आपने सुना चिंतन। आलेख श्रीमती सुधा बाला शर्मा का था और वाचक थी माधवी जेंडे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर है सुरेश वाटकर का।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्या रत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था सुरेश वाटकर का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि सामयिकी की। आज का विषय है धान में नींदा नियंत्रण।
1: किसान भैया हरो, नींदा या खरपतवार अपनी फसलों के उत्पादन के प्रभावित करवे वाले प्रमुख कारकों में से एक होते हैं, जो अपन सब जानते हैं। यदि इन खरपतवारों से अपन ने अपनी फसल की रक्षा नहीं करी और अच्छो प्रबंधन नहीं करो तो अपन 2 से 3 गुना तक जो वृद्धि है वह अपनी प्रभावित हो सकत है। और अगर अपन इनको प्रबंधन अच्छे से कर लें तो 2 से 3 गुना लो अपनी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ सकत है। अब एक लाने सबसे बड़ी बात जा है कि अपन करें का, एक नियंत्रण अपन कैसे करें, नियंत्रण के उपाय कहाँ हैं। तो एक तो पहलो उपाय जो है कि अपन शुद्ध बीज को प्रयोग करें। बुआई के लाने प्रमाणित और शुद्ध बीजों को प्रयोग करवे से अपन नींदा से अपनी फसल के मुक्त रख सकते हैं। आजकल अपन जानते हैं कि बोए जावे वाले अधिकांश बीज जोन रहते हैं वे अशुद्ध होते हैं और उनमें अशुद्धता की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहते हैं। तो बीज अगर शुद्ध है और प्रमाणित है तो अपन इन धान की जोन फसल है उसे खरपतवार से बचा सकते हैं। अगर अपन अशुद्ध बीजों को उपयोग कर रहे हैं तो खरपतवारों की संख्या या मात्रा अपनी फसलों में बढ़त जे है। यदि अपन खुद को बीज तैयार कर रहे हैं तो जा सबसे अच्छी बात है। खेत में खरपतवार कीट और व्याधि नियंत्रण के साथ साथ अन्य प्रजातियों के पौधों के सोई अपन समय रहत निकाल देवे और जो उपयुक्त पोषक तत्व हैं उनके प्रयोग से अपन अपनी धान फसल के स्वस्थ रखें। अच्छे दानों वाली फसलों को यानी बीजों को चुनाव करें और जो अपने स्वयं के बीज को उपयोग कर रहे हैं उन्हें 6-7 साल में फिर बदल देवें और दूसरे बीज को उपयोग करें। अब कछु ऐसी कृषि क्रियाएं हैं भैया जिनको उपयोग करके अपन अपनी फसल के जो है नींदा से बचा सकते हैं। तो अपन का करें कि गर्मी में जुताई जरूर करो चाहिए अपने खेतों की, जिससे नींदा के कछु बीज जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और वे ऊपरी सतह पर आ जाएं। मई या जून माह की जो वर्षा होते हैं वो में कछु बीज सोई उंगाते हैं तो इन्हें यांत्रिक विधि या शाकनाशी के प्रयोग के माध्यम से अपन नष्ट कर देवें। खरपतवारों के बीजों को फैलाओ सिंचाई की नालियों द्वारा होते भैया, जहाँ अपन सब जाना थे कि जो सिंचाई की नालियाँ बनी हैं उनके माध्यम से खरपतवार के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो सिंचाई की नालियों के आसपास नींदा नेपन पे एको ध्यान देवें। इन नालियों की हमेशा सफाई करत रहें। जहाँ तक संभव हो एक खेत से दूसरे खेत में अपन ये नींदा के बीजों को संक्रमण या फैलाव रोक सकते हैं। अगर धान के खेत में गोबर खाद या कंपोस्ट को प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखो चाहिए कि अच्छी प्रकार की खाद हो जिसमें खरपतवार के बीज नष्ट हो चुके हों। कैसे कि अगर अच्छी पकी भई कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं है तो जो खुद खरपतवार के जो बीज हैं वो की जनक के रूप में अपन अपने फसलों में दे रहे हैं। तो एको भी ध्यान रखें कि खाद अच्छी हो, साफ सुथरी हो, जो मापदंडों की हो ओसी हो कुल मिला के, कैसे इनसे भी खरपतवार जल्दी पनपत है। किसान भैया रो, फसल चक्र अपना के भी अपन नींदा की समस्या के सीमित कर सकते हैं। एक लाने जरूरी है कि खरीफ के बाद रबी में फिर से धान न लेखें। यदि दाल वाली फसल ली जाए तो नींदा की पहचान और नियंत्रण आसानी से हो सकत है, उत्पादन भी इसे अच्छो मिलत है और मिट्टी सोई उपजाऊ बनत है। खरपतवारों के नियंत्रण में उर्वरकों के समायोजन को भी बहुत योगदान होते है। तो उर्वरकों को प्रयोग करत समय अपन ये बात को ध्यान रखें कि इनकी उपलब्धता अधिक से अधिक फसल के पौधों को होए और नत्रजन की आरंभिक मात्रा बुआई के समय ने देखें। प्रथम निंदाई गुड़ाई के बाद दव चाहिए तो बा ज़्यादा अच्छी रहे थे। किसान भैया रो, नींदा को नियंत्रण अपन रासायनिक विधि से सोई कर सकते हैं। कैसे जा रासायनिक विधि जोन है वह अपेक्षाकृत थोड़ी सस्ती होत है और धान फसल के लाने एक प्रभावी विधि सोई मानी जात है। मनो रसायनों को जो उपयोग अपन करते हैं वो सही समय सही मात्रा और सही परिस्थिति इन तीन चीज़ों को ध्यान रखत भाई अगर अपन कर रहे हैं तो जो रासायनिक विधि अपन नींदा नियंत्रण के लाने कर रहे हैं वे कारगर सिद्ध होती हैं और अपनी फसल जोन है वह खरपतवार से मुक्त रहत।
0: धान फसल में नींदा नियंत्रण, कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। शाम 6:30 से दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, जो कि आप सुनेंगे शाम 6:30 से शाम 7:10 तक, और उसके बाद

शाम 7:21 से रात 8:45 तक और फिर रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इस सभा में सुबह 7:20 पर सुनिएगा गुड मॉर्निंग जबलपुर, 8:30 पर आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत, 9:00 आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसथार। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा बीना ठाकुर और किरण श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोक गीत। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन।

10:05 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी और 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दस बजकर 20 मिनट से सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जो कि आप सुनेंगे सभा के समापन यानी 3 बजे तक। एक बार फिर आपको याद दिला दें, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। ये आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 से शाम 7:10 तक, फिर 7:21 से रात 8:45 तक, और उसके बाद रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवापदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवापदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवापदकानि, 50 अतिविशिष्ट सेवापदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलङ्करणसमारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय, जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूतसंरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं, देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्तनिवेशप्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीयकृषिकृषककल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य 2-दिवसीययात्रायां भविष्यति। श्रीचौहानः असमराज्यस्य गुवाहाटीनगरे उच्चस्तरीयसमीक्षासभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असमराज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्णजलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमानसहायोद्धारकार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणाचलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां, कृषिक्षेत्राणां, सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्याङ्कनं कर्तुं वायुमार्गेण, भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कादारभ्यमाणस्य 50 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथयात्रायाः प्राक् सुरक्षासंस्थाः पञ्जाबतः जम्मूकश्मीरपर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक् ड्रिल् इति आचरन्ति, निरीक्षणप्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षितगमनागमनं सुनिश्चेतुम् अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राज़ील भी राउंड ऑफ 16 में पहुँच गया है। ब्राज़ील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets or public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced two major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण MOU भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में PM केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 MRI मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 AI सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरी, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 KV विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
3: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंड्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, उस जमाने में 200 केवी का सबस्टेशन मुंबई, कलकत्ता, बंगलुरु यहाँ लगते थे। मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंड्रा हनुमान में लग रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम

प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन

आता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताउआती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर कौंसुलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में PTI के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित EVM वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:20 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

नमस्कार दोस्तों, लंबे इंतज़ार के बाद रात से मेघ थोड़े से मेहरबान हुए हैं। ये अलग बात है कि ये मेहरबानी उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। बहरहाल छुटपुट बारिश हो रही है और कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही होता हमेशा, और ये बात ज़िंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। बहरहाल हम सब की प्रतीक्षा और इंतज़ार इस बात का है कि अब मेघों ने अच्छा खासा इंतज़ार करा लिया है और जम के बरसें, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पानी के स्रोत रहे हैं उनमें जलस्तर तेज़ी से कम होते जा रहा है, और अगर अभी भी बारिश अगर लंबे समय तक नहीं होती है तो पानी की किल्लत भी देखने में आ सकती है। फिलहाल इंतज़ार।

बस में दोस्तों, अगर मौसम की बात की जाए तो हर मौसम का अपना आनंद होता है और हर मौसम की अपनी चुनौतियाँ भी होती हैं। बरसात का मौसम देखा जाए तो कुदरत के लिए, प्रकृति के लिए सबसे अच्छी सेहत का मौसम होता है और आसमान से सिर्फ पानी नहीं बरसता बल्कि ज़िंदगी बरसती है और चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छा जाती है। लेकिन ये मौसम हम सबकी सेहत के लिए थोड़ी सी चुनौतियाँ भी लेकर आता है, क्योंकि पीने के पानी के जो स्रोत होते हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं और उसमें ज़रा सी लापरवाही या खाने पीने में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ जाती है। इसलिए इस मौसम में ख़ास तौर पर सेहत का ध्यान रखा जाए और खाने पीने में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें और रिसेप्शन पार्टियों में जब जाएँ तो थोड़ा सा अपने हाथों पर और ज़बान पर कंट्रोल ज़रूर करके रखें।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, जीवन को लेकर संत कबीर वर्षों पहले हमें ताकीद कर गए हैं कि शरीर रूपी यह चादर हम सभी को एक दिन उतारनी है, तो कोशिश ये रहे कि इस चादर में कोई दाग ना लगने पाए। और दोस्तों, कुछ यही बात नौकरी पेशा लोगों पर भी लागू होती है, और वो ये कि नौकरी रूपी चादर एक दिन उतारनी पड़ती है, और चादर बेदाग रहे ये अधिकारी कर्मचारी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि डगर पनघट की आसान नहीं होती। दोस्तों, लंबी शासकीय सेवा सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के रूप में संपन्न होती है, और हर महीने के आखिरी कार्य दिवस की शाम को न जाने कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर जीवन की दूसरी पारी के लिए

मुक्त हो जाते हैं। आज कभी आप कोई भी अखबार उठाकर देखें तो एक दो कॉलम आपको तस्वीरों के साथ ज़रूर मिल जाएंगे, जिसमें आज विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के बारे में संक्षिप्त समाचार होते हैं। दोस्तों, नौकरी का आखिरी दिन कितना महत्वपूर्ण और भाव विभोर कर देने वाला होता है, ये हम सभी जानते हैं। वर्षों की निश्चित दिनचर्या और खट्टे मीठे अनुभवों के साथ साथियों से बिछड़ने के पल जबान से ज़्यादा आँखों से बयान होते हैं। सारे ही कार्यालयों में सेवानिवृत्त साथी को रस्मी विदाई दी जाती है, ये एक परंपरा है। लेकिन एक व्यक्ति पारिवारिक उत्तरदायित्वों और सुख दुख के बीच कैसे नौकरी से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और कई बार उसे वो नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होता है। गाने से पहले एक पंक्ति याद आ रही है कि अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़े गज़ल, नए तराने छेड़ो

दोस्तों, ये दुनिया एक विशाल रंगमंच है जिसमें लोग आते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और नेपथ्य में चले जाते हैं। सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं लेकिन निश्चित हैं। इस रंगमंच के जो डायरेक्टर या निर्देशक हैं, वक्त के बड़े पाबंद हैं। उन्होंने सबकी भूमिकाएं निश्चित कर रखी हैं और सबके लिए समय भी निश्चित कर रखा है, ना एक पल ज्यादा और ना एक पल कम। भूमिकाओं की बात करें तो उसमें कुछ लोग नायक की भूमिकाएं निभाते हैं और कुछ खलनायक की भी, और हैरत इस बात की, आश्चर्य इस बात का कि दोनों को ही याद किया जाता है, बस संदर्भ अलग अलग होते हैं। इसलिए भूमिकाएं इस तरह से निभाएं और निभाई जाना चाहिए कि लोग अच्छे संदर्भों में याद करें, क्योंकि कुछ लोग लंबी भूमिका निभाने के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक छोटी सी भूमिका, छोटे से रोल को भी इतनी शिद्दत के साथ निभाते हैं कि लोगों की यादों का, उनकी स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं। और ये बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है, चाहे आप किसी भी काम से जुड़े हों, शासकीय सेवा से जुड़े हों या अशासकीय सेवा से जुड़े हों। आपकी उपलब्धि, आपने जीवन भर क्या कमाया, ये तब पता चलता है जब आप उस काम को छोड़ देते हैं, उस चादर को उतार देते हैं और लोग जब आपको याद करते हैं, और याद करने के जो संदर्भ होते हैं वो आपकी असली कमाई होती है।

बिल्कुल दोस्तों, समय की तनी हुई डोर पर खुशी गम के दो किनारों के बीच संतुलन बनाकर चलने का नाम है जिंदगी। तो हम भी चलते हैं। दीजिए अपने दोस्त चमन सालवार को इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। आपको याद दिला दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8:00 को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए

0: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषयों पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ

0: होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को

0: 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruption,

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में कर्ज फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़, फिल्म का नाम मेरी जंग।

डॉन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। वक्त हो रहा है न्यूज हेडलाइंस का।

0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण MOU हुआ है। जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध अब लागू नहीं रहेंगे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने कल पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में अपनी जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं बीना ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत।

आप सुन रहे थे बीना ठाकुर और सखियों के गाए बुंदेली लोकगीत, और कार्यक्रम लोक रसथार में लीजिए सुनिए किरण श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: किरण श्रीवास्तव के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकरसधार कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आपको याद दिला दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, जो कि आप सुनेंगे शाम 7:10 तक। उसके बाद 7:21 से रात 8:45 तक और फिर रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित भजन सोपुरी का संतूर पर बजाया राग भैरव आलाप। जोड़गत तीन ताल में निबद्ध है। पखावज पर संगत की है डालचंद शर्मा ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित भजन सोपुरी का संतूर पर बजाया राग भैरव आलाप। पखावज पर संगत की थी डालचंद्र शर्मा ने।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। दस बजने को है, जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम में हुए बदलाव का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के कारण लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन तेज बारिश का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बालाघाट जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिले में बीते 1 जून से 24 जून तक कुल 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुस्कान ओपीडी के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जांच कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें कुल 1899 लोगों की जांच की गई। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुलना स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 माह तक प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाकेवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाकेवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और अंत में बात दो बूंद जिंदगी की। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां 3,584 टीकाकरण कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी पूरी तत्परता के साथ सेवाएं दे रहे हैं। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: और मीडियम व्यू पर अब हैं आप आकाशवाणी जबलपुर के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

एक उद्घोष जो आजादी के संग्राम का जय घोष बन गया, इसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को ये मातृवंदना रची थी। बाद में से 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। 1905 के बंग भंग आंदोलन में ये गीत देशभक्ति, एकता, त्याग और बलिदान की भावना जगाने वाला प्रतीक बन गया। स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई। इस तरह से ये मातृवंदना अब तक 1.5 सदी का सफर तय कर चुकी है।

0: வந்தே மாதரம். आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरवगान की डेढ़ सदी और अब विश्व दर्पण।
1: मुख्य समाचार। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 5-4 मतों से ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि लीसा कुक को पद से हटाने से पहले उन्हें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत ने माना कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति ने किसी गवर्नर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। इस फैसले को फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि अदालत ने एक अन्य फैसले में राष्ट्रपति के अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के अधिकार का दायरा बढ़ाया है। लीसा कुक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
1: नेपाल में नेशनल असेंबली ने विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बालगे द्वारा पेश विधेयक बहुमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में लागू कर नागरिकों के लाभ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में निजी विद्यालयों पर प्रगतिशील कर इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जो लोग खर्च उठा सकते हैं उन्हें उन लोगों की सहायता के लिए अधिक योगदान देना चाहिए जो वहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश में एक तिहाई विद्यार्थी सामूहिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। मध्यम आय वाले लोगों के लिए राहत उपाय के अंतर्गत कर छूट सीमा बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि संवैधानिक निकायों के लिए बजट नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि मौजूदा सरकार की कार्यभार संभालने से पहले ही बजट सीमा तय कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट और कार्यक्रमों की घोषणा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय सेना ने वहां एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित किया है, जहां भूकंप प्रभावित लोगों का उपचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सेना प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इससे पहले 28 जून को भारत ने शक्तिशाली भूकंपों से प्रभावित वेनेजुएला के लिए आपात सहायता सामग्री भी भेजी थी। भारत ने कहा है कि इस कठिन समय में वे वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने संबोधन में ये बात कही। सम्मेलन का विषय था कानून के शासन की रक्षा, भारत और स्वीडन के अनुभव। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में विधि सम्मत शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल शक्ति नहीं बल्कि अदालतों को सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत पश्चिम से ली गई औपनिवेशिक शासन उपरांत अवधारणा नहीं है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ रहा है।
5: इटली में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1,300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।

0: उपलब्धि दिलाई। एक दूसरे मुकाबले में पैराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से मात दी। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में ये जर्मनी की पहली हार है। इस जीत के साथ ही पैराग्वे विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। और मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। सुरों की बहार लेकर आता है ये कार्यक्रम, और तैयार हो जाइए भीगने के लिए। दोस्तों, छूटना और टूटना जीवन की एक कड़वी हकीकत है, और इन दोनों के बाद हमें कीमत समझ में आती है चीजों की भी, इंसानों की भी और जज्बात की भी। आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गाने के साथ, जिसकी फिल्म का नाम है दिले नादान। गीत नक्श लायलपुरी का, संगीत खयाम का। पसंद करने वाले श्रोता आप सब हैं। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चैतेक बिरक और मीका बिरक, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, घंटाकर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोटेगांव से योगेश चौरसिया, संगीता दिव्यांश कुमार चौरसिया और उनके परिवारजन।

राजपुर से घीसू दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ और कुणाल दिलवारे, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय प्रीति राय और नवनीत राय, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल रीता देवी शिल्पा रानी और आकाश कुमार, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है एक नज़र।

अस्पताल रोड सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, अभय गुजराती और शमर सिंह गिन्नारे, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलबीर सिंह। ये चिट्ठी नर्मदा कॉलोनी मंडला से है सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली, लकी, श्वेता और परू की। और ये खत है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर का, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कैसर का। आप सबको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नाखुदा से, गीत निदा फाजली का, संगीत खयाम का, और फिल्म का नाम आपको बता ही चुके हैं। नाखुदा फिल्म का एक गाना आवाज़ दी है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने।

क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और बिमला मार्टिन, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, शहडोल से सोनू खान, मोनू खान, ब्रजेंद्र प्रजापति, कविता प्रजापति, बिरसिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। ये चिट्ठी है बर्गीनगर जबलपुर की रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि, साथ में है विवेक, वंदना और लवकुश। सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, प्रमोद राही, सिद्धार्थ और सृष्टि राही। कबर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी चंचल ढोमड़े, अर्जुन गबनेकर और धीरज सबाशेरे। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सबको सुनवा रहे हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में रानी मलिक का लिखा ये गाना, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू अभय राजपूत, मनंत राजपूत, पुष्पा सुदेशना राजपूत। ये चिट्ठी कुंदा नगर खरगोन की है। ध्रुवा सोनवणे, सुनीता सोनवणे, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे की। हनुमान वार्ड करेली से गिरधारी लाल चड़ार, शैलेंद्र सिंह चड़ार, सुयश, प्रियांश, अथर्व, अंश, तन्मय, सेलू और बबलू चड़ार। पुणे से पंकज बाडोदे, आर्या, प्रियंका, बेटी बाडोदे, चंद्र, प्रभा बाडोदे और उनके परिवारजन। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सपना, शिवी सलोनी, राजू चराटे, पेंटर बाबू। श्री तुलजा भवानी माता वार्ड खंडवा से अनिल विंचूरकर, मंगला शोभित विंचूरकर। उदयनगर से मोहित रत्नपारखी, स्वाति मिष्ठी और मनस्वी रत्नपारखी। ग्राम खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। आदर्शनगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा। नागचुन रोड खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। बाजारपारा बेमेदरा से भरत लाल सिन्हा, लाव कुमार, लक्की सिन्हा। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। बंडाबेली सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार और बंडा। दोस्तों, वक्त को पकड़ने की कोशिश हमेशा बेकार जाती है। देखा जाए तो समय की रवानी में ही जिंदगानी है, लेकिन समय से तेज एक शय और है जो भागती है, वो है मन। और कहते हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, इसलिए मन को जरूर पकड़ा जा सकता है। इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिल का संगीत, सुनिधि चौहान, फिल्म चमेली।

गड़ियामा जे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, मेहरनगर उमेर खेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से, सिद्धांत

प्रणेता अर्जुन गवाणकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर। आप सबको सुना रहे हैं आखिरी गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम।

बस दोस्तों, चाहे पतझड़ हो या सावन, आप हमेशा अपनों के साथ और अपनों के बीच रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम से अब चमन सालवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। वक्त हो रहा है न्यूज हेडलाइंस का। हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रदेशव्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों, निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों की को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण और नगरीय वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, आपकी रेडियो मित्र श्वेता के साथ। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट था, उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। एक गरीब आदमी उसके दुकान के सामने सुबह के समय रोज आता। जैसे ही दुकान में आवाजाही बढ़ती, वो भी रेस्टोरेंट में बैठकर भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खाता और चुपचाप भीड़ से निकल जाता। दुकान के नौकर चौकर ने देखा और इसकी शिकायत अपने मालिक से की। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने मुस्कुराकर कहा, इस बात को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि उस गरीब व्यक्ति के भरपेट खाने से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो ये थे एक अच्छे कर्म और साथ ही ईमानदारी भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे काम करते हैं और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, इस बात पर हम जानेंगे आपके विचार। इसके लिए हमारे फोन नंबर हैं 2660902। और जो श्रोता साथी बाहर से हमसे बात करना चाह रहे हैं, भोपाल से बाहर से, वो उनको एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 0755। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्ते नमस्ते, आकाशवाणी
1: जी, आकाशवाणी भोपाल से हम बोल रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: आप कौन दीदी?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना? पहले आप अपना नाम बताएं।
2: रमेश पेंटर, सतना से।
1: जी तो रमेश जी कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी।
1: जी हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जैसे हमारे जीवन में जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, ईमानदारी से उस काम को करते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, मतलब उसके फायदे क्या होते हैं?
2: देखिए ईमानदारी से तो देखिए हर सभी चीज का फायदा है उसमें।
1: जी
2: ईमानदारी में तो सभी चीज का फायदा है।
1: हाँ जी बताएं, इससे आपके काम कैसे होते हैं, समय पर होते हैं, सफल होते हैं, बताएं।
2: अब हम ही लोग लगे रहते हैं काम में दिन भर।
1: जी जी जी, इसके लिए आप सुबह से उठते होंगे, तैयारी करते होंगे, समय पर पहुँचते होंगे।
2: जी दीदी
1: बताएं किस तरह आप अपने काम को करते हैं?
2: अब हम लोग तो काम में लगे रहते तो लगे ही रहते हैं। हम लोग को तो काम दीवारों में लिखने जाना पड़ता है विज्ञापन।
1: अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। सुबह उठते होंगे जल्दी, उठकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर जल्दी समय पर पहुंचते होंगे अपने काम पर।
2: घर तो भाई शाम को जब तक दिन निकला रहता है काम करना पड़ता है, दीवारों में लिखना पड़ता है, वॉल पेंटिंग।
1: जी जी वॉल पेंटिंग। हाँ तो मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम पूरी ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है ना। पूरी ईमानदारी से अगर हम किसी काम को

0: करें तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा?
1: उसका फल अच्छा ही मिलता है
0: जी,
1: जब ईमानदारी से करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा
0: जी, यही मैं जानना चाह रही थी। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ
0: जी, आपका नाम बताएं।
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी तो कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम, कहते हैं ना वाणी से ही बीज झरे, वाणी से ही रसधार, और मीठा वाणी बोलिए जीवन का है सार।
0: बहुत अच्छी बात, हमेशा मीठे ही

0: वाणी ही बोलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल मैम,
0: हाँ,
1: और आकाशवाणी जो मध्य प्रदेश होता है बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन करता है, और इसमें जो निकलने वाले कार्यक्रम होते हैं जिसमें गीत सागर, नमस्कार भोपाल और कार्यक्रम बात आपकी गीत, हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, युवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हमें जो रोजगार के अवसर मिलते हैं ये भी सब कुछ बतलाए जाते हैं मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें ये तो ये जानकर लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना? हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, कि जैसे किसी काम को हम करते हैं जीवन में, तो
1: जी।
0: आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, आपका दुकान, आपके व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी हो सकता, अगर उसको हम ईमानदारी के साथ करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में?
1: जी काम को यदि यदि शांतिपूर्वक रूप से किया जाए तो काम बिल्कुल बेहतर बन जाता है, काम यदि अच्छे तरीके से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए तो काम बिल्कुल दुगने उत्साह के साथ पूरा हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करता है जब उसका मूल्य उसे प्राप्त होता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसी प्रकार से यदि हम अपने कामों को आनंद के रूप में यदि लें तो काम बोझिल नहीं नजर आता है बल्कि वह सम्मान भाव से अच्छा ही बनने का प्रयास होता है। तो काम को अच्छी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए और जीवन में अच्छा सोच रखेंगे तो सभी काम अच्छे से अच्छे हो पाएंगे।
0: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, है ना? आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: बताइए क्या हाल चाल है वहाँ का, मतलब मौसम क्या हाल चाल है?
1: है मौसम, बारिश का तो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब पानी
1: जी
0: रुक रुक कर
1: नहीं
0: गिर रहा है?
1: जी जी नहीं, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
0: नहीं हुई है? अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके यहाँ अच्छी से बारिश हो ताकि ठंडक पहुँचे, है ना? तो बताएं कि कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में हम आपके हम सब बात साझा करना चाह रहे थे कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं जीवन में, है ना, निश्चित रूप से अपने जीवन से जुड़े कुछ काम, तो वो अगर हम ईमानदारी से करें तो उसका क्या फल मिलता है?
1: फल यही मिलता है, सफलता जरूर मिलती है, भले देर सवेर मिलती है, मतलब सही ढंग से प्रयास जब हम करते हैं, समय जरूर लगता है लेकिन उस चीज की कीमत हमें बिल्कुल मिलती है।
0: वही मैं कह रही हूँ कि
1: मतलब
0: हाँ
1: कोई
0: जी
1: दूसरा रास्ता नहीं है ईमानदारी और सच्चाई के अलावा उस जगह पहुंचने के लिए।
0: बिल्कुल, कुछ लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं, तो
1: जी
0: वो सारी चीजें कारगर सिद्ध नहीं होती।
1: जी और हो भी जाए तो वो एक समय तक रहता है,
0: बस छोटे से
1: लेकिन
0: समय
1: जो
0: के लिए।
1: चीज हम
0: हाँ
1: मेहनत से और लगातार प्रयास से करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है।
0: बिल्कुल, और वही मौलिक रूप में हमारे साथ होती
1: जी
0: है ना? आपने फोन किया, बहुत अच्छे विचार हम पे बांटे, इसके लिए आपका
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सादर नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं बहुत पुराना श्रोता, 70 के दशक का श्रोता हूँ,
0: जी
1: राजेश नेमा, सिंहपुर बड़ा से।
0: जी तो आपका,
1: और आप
0: जी हम
1: हमारे
0: जानते हैं
1: पत्र
0: बिल्कुल।
1: शामिल नहीं कर रहे आपकी फरमाइश में।
0: अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको। आप हमारे बहुत पुराने श्रोता
1: जी
0: साथी हैं, है ना। और
1: नियमित पत्र भेज रहे हैं, कृपया शामिल
0: बिल्कुल
1: कीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
1: जी जी
0: और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे पुराने श्रोता साथियों से हमारी बात
1: जी
0: होती है ना।
1: मैं तो काफी पुराना श्रोता
0: जी
1: हूँ और उस समय का श्रोता हूँ जब। जी
0: बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे, बात
1: जी
0: आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में,
1: जी
0: कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप
1: जी
0: अपने जीवन से जो जुड़े रिश्ते हैं, है ना, बहुत
1: जी
0: सारे रिश्ते
1: जी
0: हैं, हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं, है ना,
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: मित्र हैं, तो इसमें अगर हम ईमानदार हैं, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपने सारे काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उसका क्या फल मिलता है हमें,
1: जी
0: बताएं।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। रिश्ते आज के समय में वैसे भी भाग दौड़ बहुत है, तो
0: जी
1: निश्चित रूप से रिश्ते तो निभाना ही चाहिए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो रिश्ते ही काम आते हैं।
0: जी हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्हें
1: जी
0: हम सम्मान दें, प्यार दें और उनके अनुभव से सीखें, क्या लगता है
1: बिल्कुल,
0: आपको।
1: बहुत आवश्यक है। वो तो बुजुर्ग एक बहुत बड़ी पाठशाला होते हैं,
0: जी
1: उनका सानिध्य नितांत आवश्यक है।
0: और

0: हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, नहीं
1: बिल्कुल, बहुत
0: है
1: वो
0: ना?
1: तो
0: आजकल
1: जरूरी
0: ऐसा हो
1: चीज है
0: गया है कि
1: जी
0: बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, मोबाइल के लिए
1: जी
0: इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें समय देते
1: जी
0: हैं। लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातों को सुने, उनके अनुभवों को सुने, तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या लगता है आपको,
1: जी जी बिल्कुल, बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब इंसान मशीन हो गया है तो रिश्ते कोई भी हो संभाल के रखना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और सबसे जो बुजुर्ग हैं उनसे तो निश्चित रूप से सान्निध्यता होनी ही चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक वो जीवन का पूरा निचोड़ होते हैं और सच्ची सीख भी देते हैं।
0: बिल्कुल। और परिवार के साथ अगर हम एक समय में मिल बैठ कर खाना खाएं, है ना, तो वो भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: अच्छा
1: वो
0: है।
1: जी बिल्कुल, वो एक परिवार के साथ रहना और मिलकर बैठ के बातें करना और सानिध्य बनाए रखना, ये आज के समय की मांग है।
0: और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं।
1: हाँ बिल्कुल जी
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: और
1: जीवन का
0: हम
1: निचोड़ मिलता है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए
0: इसका भी समाधान
1: उसकी एक
0: मिलता है।
1: विस्तृत जानकारी भी मिलती है।
0: बिल्कुल, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके पत्र आप हमें भेजते रहिए, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, मैं तो
0: बिल्कुल
1: बहुत आकाशवाणी भोपाल का तो मैं 70 के दशक का श्रोता हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल तो
1: और उस समय भी सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ,
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम लाजवाब हैं।
0: जी धन्यवाद। और आज आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत करते हैं आपका। नाम
1: जी
0: बताएं।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते मैम,
0: हाँ नाम
1: मैं
0: बताएं।
1: रानीकली छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी
1: क्या विषय रखा सर मैम आपने आज?
0: अपनी जगह का नाम एक बार हमें फिर से बता
1: जी
0: दें।
1: रानीकली छतरपुर मध्य प्रदेश,
0: जी
1: छतरपुर से।
0: हाँ, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम बात
1: थैंक यू
0: आपकी
1: मैम, थैंक यू जी।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने विषय रखा है कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में, अगर आप उसे ईमानदारी से करते हैं, है ना, अपने जीवन से जुड़े सारे अच्छे काम, अगर हम पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय है, नौकरी है, हमारा परिवार, इन सभी चीज़ों में अगर हम ईमानदार हैं तो उससे हमें क्या लाभ है?
1: ईमानदारी से तो अच्छा कोई है नहीं मैम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
0: जी
1: है ना, तो उसका तो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों में, अपने व्यवस्थाओं में अगर ईमानदार हैं,
0: जी
1: संबंधों में ईमानदार हैं आप,
0: जी
1: तो हमेशा आप सक्सेस रहेंगे है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल। हाँ
1: थोड़ी देर के लिए टाइमिंग दिक्कतें आती हैं, ये आ
0: जी
1: सकती हैं आज के परिवेश के हिसाब से,
0: जी
1: लेकिन अंततः विजय आपके ईमान की ही होगी, आपकी ईमानदारी की ही होगी है
0: जी जी जी
1: ना,
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ईमानदार होना तो एक बहुत मतलब अच्छी चीज
0: हाँ
1: है ना
0: जी
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: है ना। और
0: आज
1: बाकी तो इधर तो मतलब आज के जैसे वातावरण बदल रहा है,
0: जी जी
1: उसी हिसाब से लोग इधर उधर सब मतलब होते रहते हैं काम, कभी इससे कुछ कह दिए, कभी उससे कुछ कह दिया, लेकिन अंततः जो है वो ईमानदारी ही आपको
0: हाँ
1: सक्सेस की राह पे लेके जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आपके काम हो, है ना, कोई भी
1: जी
0: क्षेत्र हो, अगर आप उसमें लगन है, आप में ईमानदारी है
1: जी
0: आप में, तो
1: जी
0: आप जरूर सफल होंगे, है ना।
1: नहीं डेफिनेटली वो है ही है
0: जी
1: भाई, वो
0: बिल्कुल
1: सक्सेस का तो एक तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई मतलब उसका वो नहीं है कि उसमें कोई
0: जी
1: मिलावट करके आप काम करें, वो नहीं
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: जी बिल्कुल
1: ईमानदारी के संबंध डायरेक्ट आत्मा से
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना,
0: देखिए
1: तो आत्मा में
0: हाँ
1: मिलावट नहीं चलती मैम,
0: बिल्कुल, है ना।
1: दुनियादारी मिलावट चल जाएगी लेकिन
0: हाँ
1: आत्मा और परमात्मा मिलावट नहीं चलेगी, आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा तभी आप
0: बिल्कुल
1: सक्सेस हो
0: बिल्कुल
1: पाएंगे।
0: बिल्कुल, तभी
1: सही
0: आपका
1: मान रहे हो
0: जीवन
1: आप,
0: सहज सुंदर होगा, है ना।
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: फोन
1: मैम,
0: किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ओके थैंक यू मैम।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम
1: नमस्कार दीदी।
0: बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
0: जी तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में। और आज
1: धन्यवाद
0: हमने
1: दीदी आपको।
0: जी आज हमने विषय रखा है कि जीवन में आप अपने काम के प्रति अगर ईमानदार हैं तो उससे क्या फायदे हैं आपको।
1: दीदी जीवन में अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं
0: जी
1: तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है और असफलता का नाम नहीं रहता है।
0: बिल्कुल। और अगर आप लगन से करते हैं, है ना, साथ ही
1: और
0: साथ
1: उसमें उसमें आपको तरक्की होना ही होना है।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ ये ईमानदारी अगर आप जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रखते हैं तो उससे फायदा होता है आपको,
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना। परिवार में
1: सच का विश्वास बना रहता है
0: बिल्कुल, जैसे
1: और
0: आपके
1: अच्छा
0: बड़े
1: लगता
0: बुजुर्ग
1: है।
0: हैं, घर पर बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, उनका आप
1: जी,
0: सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता है
1: जो
0: ना।
1: हमारे बड़े हैं तो वो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा,
0: बिल्कुल
1: और हम अपना ज्ञान बच्चों को शेयर करेंगे उनको भी ज्ञान हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और काम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर आपका व्यवसाय है, अगर आप इन कामों में झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं तो इससे आपको सफलता अगर मिलती है वो सफलता बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। क्या सोचते हैं
1: बिल्कुल
0: आप,
1: दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। देखिए,
0: अगर हम मेहनत
1: मैं
0: हैं।
1: दुकानदार हूँ
0: जी
1: तो मेरा बिजनेस है,
0: जी जी
1: तो अगर बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहूँगा, ग्राहकों के प्रति ईमानदार नहीं रहूँगा तो
0: बिल्कुल
1: कोई एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छी बात कही आप। ग्राहकों के प्रति अगर ईमानदार हैं

0: हैं, अच्छा सामान दे रहे हैं, तो वो आपकी दुकान में आएंगे ही।
1: जी बिल्कुल दीदी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: आपका कारोबार बढ़ेगा, है ना जी। आपने फ़ोन किया और बहुत ही अच्छे विचार हम तक बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, धन्यवाद आपको भी।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ कार्यक्रम बात आपके गीत
1: वंदे
0: हमारे।
1: मातरम।
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: किशन घी वाला।
0: जी तो कहाँ से
1: हेलो,
0: बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताएं।
1: दमोह।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, ये
1: जी
0: कार्यक्रम में आपका फोन लगा है और हम बात कर रहे हैं आज ईमानदारी के गुण की, कि अगर आप ईमानदार हैं तो उससे आपके
1: जी
0: जीवन में आपको क्या फायदा है।
1: बहुत अच्छा विषय है,
0: जी
1: मेरा ही विषय है ये। जी
0: जी जी जी
1: सुनिए,
0: हाँ
1: मेरा ऑटोमोबाइल का काम है। तो
0: जी जी जी
1: यदि हम दुकान चलाते हुए, अपना व्यापार करते हुए ईमानदारी से, मतलब जिस चीज का जो रेट है वही बताते चले जाते हैं सबको, तो वो फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। एक दो बार बस देखा कि इस गेयर की कीमत 920 है, तो सबको 920।
0: बिल्कुल, बहुत
1: आप
0: अच्छी
1: सुन
0: बात।
1: रही
0: हाँ
1: हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप
1: जी
0: से आपका कारोबार बढ़ेगा,
1: दूसरी चीज,
0: है ना।
1: अब हमारे यहाँ वर्कशॉप है,
0: जी जी
1: सर्विस सेंटर है मारुति,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें जो भी पार्ट लगता है,
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: भी, चाहे वो 2 रुपए का बोल्ट है या स्क्रू है, और चाहे वो 5,000 रुपए का कोई पार्ट है, तो ईमानदारी से उतना ही लिखा जाता है उसमें। हेरा फेरी या आज की भाषा में कट पट कुछ नहीं किया जाता,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: वो फिर हमेशा के लिए, कोई भी हमारा बिल देखता है तो हमारे बिल ऑनलाइन जाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: जरा भी उसमें संशय नहीं रहता है। कोई
0: बिल्कुल
1: अगर 6 महीने बाद भी बिल देखे कि आपकी मारुति, हमारी मारुति में ये काम हुआ था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: बराबर हुआ था, ये
0: बिल्कुल
1: पार्ट
0: बिल्कुल,
1: लगा था।
0: ये बहुत विश्वास की बात है और आपका एक
1: जी
0: भरोसा रहेगा अपने ग्राहकों
1: जी
0: के लिए। तो
1: तो उससे बहुत फायदा होता है,
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: लाभ होता
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है
0: आपने देखिए
1: ईमानदारी। तो
0: हाँ फोन किया
1: ये मेरा
0: और
1: व्यक्तिगत अनुभव है।
0: बिल्कुल बहुत
1: अब
0: अच्छा
1: आप
0: अनुभव,
1: बताइए, कुछ
0: बहुत
1: आप
0: अच्छा
1: भी
0: अनुभव।
1: बताइए।
0: हाँ तो बस हम इस कार्यक्रम में तो आपके विचार जानना चाह रहे हैं, आपके अनमोल विचार जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपने
1: कुछ
0: फोन
1: हमें
0: किया।
1: भी आपसे सीखने को मिल जाता ना,
0: जी जी
1: कुछ
0: जी
1: आप भी बता दीजिए, आप कौन
0: नहीं
1: बोल
0: नहीं
1: रही हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ और आपसे जो विचार हमने सुनने को मिले वो बहुत अच्छे लगे, है ना। इसके लिए आपका
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम कह सकते हैं।
1: आपको भी
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जी नमस्ते।
2: जी नमस्कार बहन जी,
1: आपका नाम बताएं।
2: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजना, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, है ना।
2: जी,
1: और आज हम बात कर रहे हैं ईमानदारी के गुण की, कि हम अपने जीवन में अगर किसी भी काम से जुड़े हुए हों, अपने जीवन से जुड़े अच्छे काम, आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, पढ़ाई, तो इन सब चीजों में ईमानदारी के क्या मायने हैं।
2: ईमानदारी के मायने है कि जैसे अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो अपन को मतलब पीछे नहीं हटना पड़ेगा, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी आगे के लिए।
1: जी बिल्कुल,
2: और ईमानदारी से भी काम करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और कोई काम है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेफजूल का पैसा ही लेना चाहिए किसी का। जो काम करे वो ईमानदारी से करे।
1: बिल्कुल, अगर ईमानदार हैं हम तो निश्चित रूप से मतलब एक भरोसा कायम होगा हमारा।
2: जी, जी,
1: लोगों के प्रति, है ना, और लोग हम पे विश्वास करेंगे, है ना।
2: जी बिल्कुल,
1: और
2: जी,
1: हम निश्चित रूप से सफल होंगे।
2: जी
1: तो
2: जी, आज आप शायद मुश्किल लगता है।
1: नहीं, मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
2: अच्छा, है ना, आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: जी जी जी, और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आज मैं थी आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर अमरवीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों, निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भोपाल के गांधी भवन में आज शाम 6 बजे भारत में भाषाओं की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आ गले लग जा। इस फिल्म का गाना आवाज़ है किशोर कुमार सुषमा श्रेष्ठा की, साहिर लुधियानवी के बोल है और संगीत है आर डी बर्मन का। और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ ने इस गाने को पसंद किया है। तो चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आ गले लग जा का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये पत्र हम तक आया है राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन का, और साथ ही साथ उपाध्याय नगर से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, और साथ ही साथ नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म लोफर का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की बोल है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब सुनिए फिल्म राम लखन का गाना, मनहर अनुराधा और साथियों की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली, और ये फरमाइश है पटेल नगर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू ने इस गीत को पसंद किया है।

स्वातंत्र्यम का गाना सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। गाने को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, राव और शाहिद ने इस गाने को पसंद किया है। और अकोला से रमेश और वैशाली ने इस गीत को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुम बिन। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों की। फैज अनवर ने गाने को लिखा है और संगीत है निखिल विनय का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगने से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और सिंगारपुर से सालिक पुजारी। साथ ही साथ इंदौर से ये फरमाइश हम तक आई है लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की।

अभी आपकी फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी में अब तक आपने सुना, हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर राजकुमार ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप करके स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट ने उसे एक अलग महल दे दिया जहाँ भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी में।
1: नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
2: वो उधर छुप रही है स्वामी।
1: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है? निकाल कुलटा।
3: निकालती हूँ, ये रहे सम्राट।
1: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो।
2: चल निकाल, दोनों हार कहाँ है?
3: ये है सम्राट।
1: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।
3: सम्राट,
1: इस प्रासाद में रहने वाले सभी दास दासियां देख लो, अपनी साम्राज्ञी की काली करतूत दो। इसने अपनी बहन को बुलाया था भुवन मोहिनी की हत्या के लिए। ये कृतज्ञ स्त्री भुवन मोहिनी के त्याग और बलिदान के बदले उसे विष दिला रही थी। महाराज आदित्य सेन की पुत्री का वास्तविक स्वरूप देख लिया? देख लो अच्छी।

0: 13। देख लो सब और जान लो इसके चरित्र को अच्छी तरह से। भुवन मोहिनी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए। प्रतिकार में ये क्या दे रही थी भुवन मोहिनी को? ये विष की शीशी, जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। इन हत्यारियों के सुंदर चेहरों के धोखे में आकर तुम लोग भी इनके कहने पर आ गए। ये विमला नाम की स्त्री को चिकित्सिका नहीं, ये डायन है, डायन। सैनिक स्त्रियों, ले जाओ इन दोनों को, इसी महल में अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, किसी ने भी लालच में आकर इन दोनों में से किसी की भी कोई सहायता की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों को कोई वस्तु ना दी जाए। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों से किसी को बात ना करने दिया जाए, भले ही वो राज परिवार का ही क्यों ना हो। यदि मुझे इसकी जानकारी मिली कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की गई तो उसे मैं राजद्रोह मानूंगा। राजद्रोह! ये आदेश राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी है।
1: सब

0: राजमाता राजमाता,
1: क्या हुआ संरक्षिका, क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी डरी हुई क्यों हो?
0: राजमाता, आज हम सब ने सम्राट का वो रूप देखा जो भगवान न करे कभी किसी को दोबारा देखना पड़े।
1: क्या हुआ?
0: सम्राट साम्राज्ञी और उनकी अतिथि बहन विमला को अंतर कक्ष से मारते पीटते बाहर ले आए और बंदी गृह में बंद करा दिया।
1: क्या कहा? किस अपराध में?
0: भुवन मोहिनी की हत्या के प्रयास के अपराध में।
1: क्या?
0: हाँ,
1: साम्राज्ञी ऐसा नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ।
0: परंतु?
1: क्या परंतु, मैं स्वयं देखती हूँ, तू घबरा मत। संरक्षिका, गांधारी स्त्रियों से कहो बंदी गृह का द्वार खोले।
0: क्षमा राजमाता, क्षमा। सम्राट का आदेश है इन अपराधिनियों से कोई नहीं मिल सकता, चाहे वो राज परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो।
1: क्या?
0: हाँ।

0: सावधान, भारत सम्राट विजय शर्मा अंतापुर में आ रहे हैं।
1: अरण्यक, सबको कहो कि बंदी गृह के सामने मेरे आदेश को सुनने के लिए उपस्थित हूं।
2: जो आज्ञा।
3: अंतापुर के सभी राज कर्मचारी सम्राट का आदेश सुनने के लिए बंदी गृह के समक्ष उपस्थित हो। शीघ्रता करो।
4: सम्राट, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट हमें, सम्राट क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट, सम्राट, सम्राट।
1: कितनी बार चंद्रहास ने, कितनी बार क्षमा करो। यदि भुवन मोहिनी की हत्या तुम कर चुकी होती तब भी क्या तुम क्षमा मांगती?
5: प्रणाम सम्राट,
6: प्रणाम सम्राट,
5: प्रणाम सम्राट।
1: इनमें से महिला मजदूर कौन है?
5: हम लोग हैं सम्राट,
6: हम लोग हैं।
4: अंतिम बार, अंतिम बार सम्राट।

0: ki sogun. हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें क्षमा कर दीजिए।
1: मैं विवश हूं चंद्रहास तुम्हारे छल कपट से, इसलिए अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। सुन लो सब लोग, एक बार पुनः मैं इन दोनों के अपराधों को दोहराता हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ममेरी बहन विमला को बुलाकर भुवन मोहिनी के प्राण लेने की चेष्टा की थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी अस्वस्थता के समय स्वयं उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। कई बार क्षमादान दे चुकने के बाद भी साम्राज्ञी ने मेरे और मेरे आदेशों की हर संभव उपेक्षा की। महिला श्रमिकों को मेरा आदेश है कि प्राण हत्या के प्रयास के आरोप में चंद्रहासिनी और उसकी बहन विमला की कोठरियों को बंद कर दिया जाए। वो दोनों बहनें दीवारों के भीतर चुनवा दी जाएं आज ही।
0: नहीं, नहीं सम्राट।

0: चाहा किया तुमने। चंद्रहासुनी को मृत्यु दंड का परिणाम अनिष्टकारी होगा पुत्र, अनिष्टकारी। संभवतः महाराज आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे पुत्र।
1: राजकीय आदेशों के प्रति किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए माँ। गंभीरतम अपराधों का दंड भी गंभीर और भयानक होता है। चंद्रहासिनी राजकुमारी बनकर भी अपने जीवन में महानता को स्थान न दे सकी। भारत राष्ट्र की साम्राज्ञी ऐसे नीच षड्यंत्रों का आश्रय ले, इसका प्रभाव सारी जनता पर कितना भयानक पड़ता, कभी सोचा है आपने? मुझे दुनिया क्या कहती? यदि मैंने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया होता तो संभवतः कल वो मुझसे ही प्रतिकार लेने को तत्पर हो जाती। निरंतर मेरी उपेक्षा करके बारंबार क्षमा और अभयदान का अनुचित लाभ उठाया है उसने। ऐसी अनैतिक घटनाओं का जनजीवन पर सर्वदा भयानक प्रभाव पड़ता, इसलिए जैसा अपराध साम्राज्ञी ने किया वैसा ही दंड उसे भोगना भी पड़ेगा।
0: मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्र वधु का जीवन बच जाए? चाहती तो ये हूं कि बंदी गृह का द्वार तोड़वा दूं, परंतु सम्राट ने वहां सैनिक पहरा बिठा दिया है। क्या होगा मेरे 5 वर्ष के पौत्र का, जो मात्र विहीन होकर अति दीन मलिन सा दीख पड़ने लगा है। अब मुझे ही उसे अपने संरक्षण में रखना होगा। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं कि अपने वृद्ध पति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं।

0: ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कहेगी कि सम्राट ने एक नर्तकी का पक्ष लेकर स्वयं अपनी साम्राज्ञी को मृत्यु दंड प्रदान किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कलंक ढोने से उचित तो ये है कि अब मैं रुग्ण शैया से उठूं ही ना।
1: नहीं देवी भुवन मोहिनी, ऐसा मत सोचिए, अन्यथा सम्राट तो और भी दुखी हो जाएंगे। वो अपने निर्णय से अभी ही बहुत दुखी हैं। एक मास हो गए वो संपूर्ण कार्यों से जैसे संन्यास ले चुके हों, एकांतवास में ही हैं।
0: जिस राजकुमारी के सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अंत में उसी का अस्तित्व ना पाऊं तो मेरा समर्पण तो व्यर्थ ही हो गया।

0: अब सम्राट का क्या होगा? अरण्यक, जी चाहता है कि एक बार सम्राट को जाकर मैं स्वयं समझाने का प्रयत्न करूं।
1: कोई लाभ नहीं होगा देवी, सम्राट किसी से भी नहीं मिलना चाहते। इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं आपकी मनोभावनाओं को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।
2: असक्त रणभिषंगः पुत्र दार गृह दिशु, मैं स्त्री पुत्र और गृहादिक के निर्मम सामीप्य से अपनी अंतरात्मा को मुक्त कर चुका हूं। बस अरण्यक, भुवन मोहिनी की धुंधली स्मृति मात्र से मुक्त नहीं हो पाया। कैसी है वो?
1: पूरे प्रकरण से वो बहुत ही आहत है मित्र, वो आपसे मिलना चाहती है।
2: नहीं अरण्यक, जब मैंने निर्मम न्याय के चरणों में साम्राज्ञी का बलिदान कर दिया, तब भुवन मोहिनी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ना होगा, क्योंकि भुवन मोहिनी के स्त्री सौंदर्य के उपभोग करने की लिप्सा ने ही तो इस बलिदान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिस पर चढ़कर चंद्रहासिनी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि विवाहिता पत्नी को पति के संपूर्ण प्रेम की आकांक्षा थी तो वो पाप नहीं था, मैं जानता हूं, किंतु संपूर्ण स्नेह दान न मिलने पर उसके हृदय में द्वेष और प्रतिहिंसा की भावना जागृत हुई और निरपराध भुवन मोहिनी का सर्वनाश करने के कुचक्र ने उसे मृत्युदंड दिलाया। इसमें मेरा क्या दोष? चंद्रहासिनी ने तो स्वयं ही मेरी पत्नी बनने का आग्रह किया था, ये जानते हुए कि मैं भुवन मोहिनी के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। भुवन मोहिनी उदारता पूर्वक उसका स्वागत करती रही और उसके मांगने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भी चंद्रहासिनी को कृतघ्न बनकर भुवन मोहिनी को विषपान कराने के षड्यंत्र में नहीं तल्लीन होना चाहिए था। इस निर्णय का मुझे कोई पश्चाताप नहीं, चंद्रहासिनी ने जैसा किया वैसा ही परिणाम पाया। अरण्यक, मैं भुवन मोहिनी से मिलना चाहता हूं, उसे बुला लाओ आज ही।
1: जो आज्ञा मित्र।

0: ये मैं क्या देख रही हूँ? प्रस्तर हृदय वाला भारत का सम्राट अपनी करुणा से स्वयं विगलित है। आपके नेत्रों में करुणा की ये अश्रुधारा क्यों?
1: मैं सम्राट होकर भी आज दीनहीन बन गया हूं भुवन। अब इस अभिशापित जीवन का अंत हो, बस यही कामना है। मैंने अपना सर्वनाश कर डाला। मैं यदि सम्राट न होता तो शायद इतनी क्रूरता मेरे जीवन में ना आती। आज मैंने अपने इकलौते पुत्र को मातृत्व के सुख से वंचित कर दिया, माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला? हत्या का पाप? आज चंद्रहासिनी मेरी अंतर्दृष्टि के अत से इति तक समाई हुई है। मानो नेत्रों में आंसू भरे दया की भीख मांग रही हो।

0: और मेरे सामने भीषण रक्त सागर उद्वेलित होता दिखाई पड़ता है।
1: रक्त सागर,
0: महाराज आदित्य सेन की प्रतिच्छाया मानो भीषण प्रतिकार के लिए उद्विग्न है। वो अपने प्राणों से प्रिय एकमात्र संतान के सर्वनाश का प्रतिकार लेना चाहते। बड़े बड़े सामंतों की नंगी तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं और वो चंद्रहासनी के मृत्यु का पाप प्रक्षालन करने के लिए चंडी की जिह्वा बनकर मेरी सेना और स्वयं मेरे शरीर का रक्त दान मांग रही है। मेरी न्याय प्रियता का भयानक परिणाम प्रतिशोध की रक्त वैतरणी है भुवन मोहिनी, जिसमें मेरे सहित साम्राज्य की सेना को भी निमग्न होना होगा।
1: देव, क्या महाराज आदित्य सेन भारत सम्राट से युद्ध चाहते हैं?
0: हां भुवन मोहिनी, मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो बड़ी तत्परता के साथ भयानक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनकी सेना की जितनी चिंता नहीं है, उससे अधिक भय है कि बारंबार पराजित हो जाती हमारे आपसी वमन

0: से का लाभ उठाकर भारत भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करेगी, जिसका संभव परिणाम राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण होगा और भारतीय राष्ट्र शताब्दियों सहस्त्राब्दियों तक पराजय और दासत्व के कलंक का टीका लगाकर विदेशी आक्रामक शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा।
1: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
0: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
1: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
0: टाला जा सकता है।
1: कैसे?
0: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा है कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्वभर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जहाँ विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैरवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, महफिल में आ जाती है जान आपके आ जाने से। स्वागत बंदन अभिनंदन प्यारी सखियों का कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी सखी शालिनी सोनी। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं प्यारी सखियों? माना कि व्यस्त होंगी, पर आइए बैठ जाइए कुछ सुकून के पलों के साथ और भूल जाइए सारी मुश्किलें परेशानियां तकलीफें। आज की महिला सभा में हम खुलकर बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाएंगे। चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और कई योजनाओं की ऐतिहासिक पहल ने करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल दिया है। सखियों, मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है। और सखियों, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ये दिन लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकारों को जवाबदेह बनाने में संसदों की भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2018 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की गई थी। 30 जून की ये तारीख अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की स्थापना का भी प्रतीक है। सखियों, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की संसदों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और आधुनिक चुनौतियों जैसे प्रौद्योगिकी और लैंगिक समानता के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सखियों, हमें भी लोकतंत्र को समझना होगा, लोकतंत्र की जानकारी रखनी होगी। संसद क्या है, विधानसभा क्या है, सांसद या विधायक का क्या काम होता है, कानून कैसे बनते हैं, ये जानना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। साथ ही साथ सवाल पूछें, जवाबदेही तय करें, कानून का पालन करें। संसद कानून बनाती है, पालन करना हमारा धर्म होता है। बहस में हिस्सा तो लें मगर मर्यादा बनाए रखें। राजनीति से दूर नहीं रहें बल्कि जिम्मेदारी से भागीदारी करें। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। सखियों, जानो, वोट करो, सवाल पूछो, कानून मानो, भागीदारी करो, यही 5 शब्द नागरिकता का धर्म भी है। संसद मंदिर है लोकतंत्र का सखियो, उसकी मर्यादा, उसकी ताकत बनाए रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इतनी सारी जानकारी के बाद सखियो, अब बारी है मनोरंजन की। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है एक प्यारा सा गीत।

एक बार पुनः स्वागत है प्यारी सखियों का कार्यक्रम में। सखियों, मोदी जी ने कहा है ना, नारी शक्ति ही देश की शक्ति है और इसी सोच को बढ़ावा दे रही है पीएम मुद्रा योजना। जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना। आज हम बात कर रहे हैं पीएम मुद्रा योजना की और इस योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने वाली योजना। आपके मन में क्या है सखियों? सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं या अचार पापड़ का बिजनेस करना चाहती हैं? टिफिन सर्विसेज, डेयरी, बकरी पालन या ऑनलाइन रिसेलिंग, जो भी सपना आपका हो सखियों, वो पूरा करेगी मुद्रा योजना। और सबसे बड़ी बात तो ये है बहनों, वो भी बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के। सिर्फ आपका जज्बा और एक छोटा सा बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास। लोन भी आपकी जरूरत के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा गया है सखियों। शिशु लोन यानी कि आप 50,000 तक का लोन ले सकती हैं जब आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, जैसे सिलाई मशीन खरीदनी है। किशोर लोन जिसमें आप 50,000 से लेके 5,000 तक का लोन ले सकती हैं, जैसे आपको अपनी मशीनों को बढ़ाना है, 2 से 3 नई मशीनें लाना है। तरुण लोन में आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं जब आप अपना कोई नया शोरूम खोलना चाहती हैं। ब्याज भी बहुत कम है सखियों और चुकाने के लिए 5 साल तक का समय मिल जाता है। घर बैठे पैसे तो नहीं आएंगे बहनों, सरकार आपका हाँ जरूर पकड़ेगी। चूल्हा चौका संभालने वाली नारी जब कलम पकड़ लेती है और हिसाब संभालने लगती है ना सखियों, तो घर भी चलता है और देश भी बनता है। तो सखियो, देर किस बात की, अपने नजदीकी बैंक, जनधन केंद्र या CSC सेंटर जाइए, आधार कार्ड, फोटोकॉपी और बिजनेस का आइडिया लेकर जाइए, फॉर्म भरिए और करा लीजिए अपना लोन। याद रखिए सखियो, सपना आपका, हौसला आपका और साथ सरकार का। तो फिर देर किस बात की, उठो बढ़ो और बन जाओ आत्मनिर्भर भारत की असली शिल्पकार। और सचमुच सखियो, जब सबका साथ मिलता है ना, निश्चित ही कुछ नया करने का जज्बा आ ही जाता है। आज के क्रम मेरी उड़ान में हमारे साथ हैं सखी तृप्ति कुमायू, जो कि हैं इंटीरियर डिजाइनर। तो आइए इनसे बात करते हैं क्रम मेरी उड़ान में।

0: तृप्ति जी आपको हमारा नमस्कार, और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में।
1: जी नमस्कार मैम। बेसिकली मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं इस इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशन को पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों का इंटीरियर किया है, डेकोरेशन में हेल्प की है, और उनके हमने जो

0: घर के जो हमारे फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में हमने हेल्प की है। तो ये काम मैं पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ और हमारा एक है इंस्टीट्यूट, वो हम मैं रन कर रही हूँ जो कि डिजाइन सॉल्यूशन के नाम से है, जहाँ पर हम बच्चों को इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज सिखाते हैं ताकि बच्चे अपने हुनर को देखें और उसको लेके वो अपने करियर में आगे बढ़े। मैं अभी इस प्रोफेशन में काम कर रही हूँ।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चे इस और आगे बढ़े। अभी हम देख ही रहे हैं कि त्योहार का समय चल रहा है और सभी अपने घर को रिन्यू कराने में, रिनोवेशन में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत व्यस्त होंगी। और मैं बस ये जानना चाहूंगी और इसके बाद कि आपने अपने जो इस काम की शुरुआत है वो कैसे की, आपको कैसे रुझान आया इस दिशा की ओर?
0: देखिए मैम, पहले तो मेरा जो सब्जेक्ट था, मतलब स्कूल टाइम में मेरा था PCM, साइंस बैकग्राउंड से थी मैं, मेरा इंटीरियर से कोई रिलेशन नहीं था। मतलब धीरे धीरे मैंने स्टडी करना स्टार्ट करा तो मेरा इंटरेस्ट बहुत आया, मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं यार इंटीरियर में भी ये चीजें होती हैं, इसको इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। मतलब मेरे घर में भी जैसे हम लोग फेस्टिव में जब घर रिनोवेट करते थे तो मैं मेरे फादर की और मदर की बहुत हेल्प करती थी, तो पूरा रिनोवेशन मतलब 50% घर का काम मैं करती थी वहां पर, इंटीरियर ही करना है। फिर मैंने सोचा कि हम इंटीरियर में कोर्स करें, मैं मार्केट गई, मुझे पता लगा कि इंटीरियर में कोर्सेज होते हैं तो उसके लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत पड़ती है अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं आगे। तो मैंने फिर इसमें जो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है डिप्लोमा, वो मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है वो मैंने लिया और मैंने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं ये इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट चूज करा कि लाइक मुझे आगे इसमें काम भी करना था और मैं चाह रही हूँ कि काफी सारे, मतलब पूरे इंडिया में या हमारा जो MP इंदौर के जो बच्चे वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े और हम उनको अच्छे डिजाइनर बनाएं, इंडस्ट्री में जाके अच्छे से क्लाइंट्स का काम करें और वो अपने एक स्किल उनके पास रहेगी तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में। तो हमारा मेन मोटो यही है और इसीलिए मैंने इंटीरियर किया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था।
1: वाकई बहुत मेहनत का काम है और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी जो पढ़ाई है, जो आपकी लाइन है, उससे हटके आपने अपने रुचि के हिसाब से अपना करियर चुना। और वाकई जहां हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी रुचि होती है, वो काम बहुत ही बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। जी, और एक बात और जानना चाहूंगी कि कितना लगभग समय दे पाती हैं आप घर और काम के बीच में, कैसे सामंजस्य कर पाती हैं?
0: मतलब पहले मुझे शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था काम अपना इंटीरियर का तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि जैसे घर भी मैनेज करना होता है, देन मेरी साथ में पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा PhD चल रहा था और मैंने साथ में इंटीरियर करा, कॉलेज भी जाती थी, फिर मैं इंटीरियर की क्लासेस भी लेती थी, फिर मेरा प्रैक्टिस सेशन होता था, मतलब हमारी 5 घंटे की क्लास होती थी इंटीरियर की, वो भी हम करते थे, फिर उसके बाद 3 घंटे घर पे प्रैक्टिस करते थे, फिर घर में और भी काम रहते हैं वो हम करते थे। तो मतलब कि बहुत हेक्टिक हो जाता था, रात को 3-4 बजे हम सोते थे, लाइक कभी कभी तो पूरी पूरी रात हम नहीं सो पाते थे, लाइक पूरी पूरी रात जाग के काम करा है हमने।
1: जी,
0: तो बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे चीजें जब ऐसा स्टेबल हुई तो अब मैनेज हो जाता है।
1: तो हम अपनी सखियों से ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपको बहुत अलग से कोई समय ऐसा नहीं है कि आपको ये देना पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर गृहस्थी के साथ भी इस करियर ऑप्शन को चुन सकती हैं।
0: हाँ, और मैंने बताया ना जैसे आजकल काफी सारी महिलाएं ऐसी रहती हैं जो ज्यादा एजुकेट नहीं हो पाती किसी रीजन से, नई स्टडी नहीं कर पा रहे, तो जैसे आपका अगर 10वीं पास है तो भी ये प्रोफेशन में आप एंटर हो सकते हैं और 2 से 3 साल का जो कोर्स होता है वो आप करके आप मतलब अपने आप को एज अ डिजाइनर आप रिप्रेजेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी
0: और आगे मैम इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है।
1: आप हमें, हमारी सखियों को कुछ ऐसे कोर्स बताएं जो वो कर सकती हूँ।
0: मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे के इस माध्यम से जुड़ने को मिला, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य मैम यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे प्रेरित करें कि वो कुछ आगे अपना स्किल इम्प्रूव करके आगे काम करे, वो अपने पैरों पे खड़े होकर, राइट। तो हमारा उद्देश्य यही है और मैं सखियों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए इसके लिए आपको कोई ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, आपने अगर 10वीं किया है तो भी आप इंटीरियर में या फैशन में आ सकते हैं। इसके कोर्सेज वैसे तो 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अब

0: जैसे कोई महिला है जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं और जो टाइम नहीं दे पाती ज्यादा, तो वो एक साल का भी कोर्स कर सकती है। और सबसे अच्छी बात मैम ये मतलब इसमें आपको सिर्फ तीन से चार घंटे की क्लासेस देना है, मतलब जैसे आप अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी जॉब के साथ में ही किया है तो अच्छे से मैनेज हो जाता है।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारी सखियां घर बैठे ही इस करियर विकल्प को चुन सकती हैं और एक छोटी सी शुरुआत घर से ही कर सकती हैं। तृप्ति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी, वाकई प्रेरणा मिली होगी इन बातचीत सुन के। तृप्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया।

सखियो, अभी हम सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान तृप्ति कुमायू के साथ, और अब बात कुछ सजने सवरने की हो जाए। सखियो देखिए ना सखियो, बारिश में अक्सर हमारा मेकअप जल्दी ही चिपचिपा और बेकार दिखने लगता है, तो इससे कैसे बचा जाए आइए जानते हैं आज के क्रम रूपलावण्य में। आज हम बात करेंगे कि बारिश में या मानसून में भी हम अपने मेकअप को कैसे एकदम फ्रेश रख सकते हैं। सखियो मेकअप से पहले चेहरे पर बर्फ लगाएं, जिससे फेस पर मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहेगा। अब बारी है प्राइमर की, तो आप मॉइस्चराइज प्राइमर चुने और इससे मेकअप उमस में भी फ्रेश लगेगा। लाइट वेट फाउंडेशन चुने, चिपचिपे और हैवी फाउंडेशन पूरी तरह से अवॉइड करें। अब बेस सेट करने के लिए आप उसके ऊपर पाउडर चुन सकते हैं, लेकिन याद रखें सखियों कि ये भी ह्यूमिडिटी प्रूफ होना चाहिए। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप में इस मौसम में बार बार पसीना भी आता है, इसलिए वाटर प्रूफ आई मेकअप चुने। ब्राइट कलर्स के लिपस्टिक प्रयोग करें जो लॉन्ग लास्टिंग और स्मच प्रूफ हो। साथ ही साथ मानसून में चिक टिंट का उपयोग करें, ये लाइट वेट ब्राइट होने चाहिए जो लंबे समय तक टिके रहें। आखिर में मेकअप के ऊपर फिक्सर जरूर स्प्रे करें, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं करना है। बस इतने छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे सखियों तो आपका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश लगेगा और आप दिखेंगे खूबसूरत।

तो नोट करिए, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए सरसों 4 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, सौंफ 3 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 से 5 बड़े चम्मच, स्वाद अनुसार काला नमक और 1 बड़ा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच आप इसमें हींग ले सकते हैं। सबसे पहले सखियों सरसों, मेथी, जीरा, सौंफ और अजवाइन को हल्का सा भून लें। मसाले जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद मसालों को दरदरा पीस लें, बहुत बारीक पाउडर भी ना बनाएं। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक और हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाला। अब इस मसाले को एयरटाइट जार में भरकर आप 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं सखियो। आप जब भी चाहें आम, नींबू, गाजर, मिर्च किसी का भी झटपट से अचार बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस इन्हें बारीक काट लीजिए और मिला दीजिए इस मसाले में और ऊपर से डाल दीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म सरसों का तेल। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाले के साथ झटपट अचार भी। चटपटे अचार के बाद अब बारी है बहनों एक प्यारे से गीत की।

और से क्यों, अब बात हो जाए कुछ काम की। जी हाँ, काम की बातों में आज बात करेंगे हम बचत की। सखियों, बचत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ पैसे की तस्वीर आ जाती है, पर सच बात ये नहीं है बचत सिर्फ पैसे की ही हो। बचत एक ऐसी सोच है, एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सखियों, बचत कई तरह की हो सकती है और हर तरह की बचत हमें किसी न किसी रूप में अमीर बनाती ही है। जैसे पैसों की बात करें तो कहते हैं ना सखियों कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम रोज 20 से 50 रुपए जैसी छोटी छोटी बचत भी करते हैं ना सखियों, तो ये हमारी इमरजेंसी में काम आती है। पहले बचत फिर खर्च, ये मंत्र अगर हम अपना लेते हैं ना सखियों, तो बचत तो होना तय है। इसके लिए सखियों, आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या SIP में पैसे रख सकती हैं। अब बात जरूरी बचत यानी समय की बचत की। समय की बचत कहते हैं ना जीवन की बचत। दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं बल्कि समय है। जो गया वो वापस नहीं आता।

घंटों फोन स्क्रॉल करना, बेकार की गपशप, बिना प्लान के काम करना, ये सारा समय की बर्बादी है। इसके लिए एक डायरी बनाएं, फिक्स टाइम टेबल बनाएं, पहले काम फिर आराम इस मंत्र को अपनाएं, फिर देखिए सारे काम आपके खुद ब खुद समय पर हो जाएंगे। इसी तरह संसाधन की बचत, जी हाँ, धरती पर पानी, बिजली, पेड़, ये सब मुफ्त में नहीं है। नल खुला छोड़ देना, लाइट जली छोड़ देना, कागज बर्बाद करना, ये आदतें हमें नहीं बल्कि पूरे देश को गरीब बनाती हैं। इसलिए कोशिश करें और छोटी छोटी बचत करें जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह अगर गुस्से में हम कभी कभी किसी को दो शब्द ज्यादा बोल देते हैं ना, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें, इससे क्या होगा, हमारे रिश्तों की बचत। जी हाँ, किसी से अगर हम माफी मांग लेते हैं या किसी को हम माफ कर देते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते बच जाते हैं। एक और बचत है जो है असली दौलत, वो है सेहत की बचत। आज अगर हम 30 मिनट वॉक कर लेते हैं तो कल डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा तला भुना कम खा लेते हैं ना सखियों, तो कल दवाइयों के खर्च से बच जाएंगे। इसलिए सेहत बची तो सब बचा। याद रखिए सखियों, पैसा बचे तो सुख बचे, समय बचे तो तरक्की बचे, रिश्ते बचे तो चैन बचे, सेहत बचे तो सब बचे। तो शुरुआत आज से ही होगी ना सखियो, लेकिन समय तो नहीं बच रहा है अब आपसे बात करने के लिए। तो सखियो, अब चलने का समय हो रहा है। आपको बता दें, आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दे अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं पूर्णिमा नतानी द्वारा गाए गीत और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। चलिए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज में फिल्म दम लगा के हईशा से।

अनु मलिक का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल, कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दम लगा के हैशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमर्जियां से, आवाज़ है हर्षदीप कौर और जाजम शर्मा की।

0: अमित त्रिवेदी का संगीत शैली के लिखे बोल हर्षदीप कौर और जाज़ महमूद शर्मा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मरमर्जिया से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रोड बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गढ़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीडी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्यवृत्ति की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1,720 रुपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1,710 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयरहाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा कुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडएसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले

लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

0: हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का, जिसमें आपके भेजे हुए पत्रों को हम शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में और यह है फिल्म नागिन से। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

हेमंत कुमार का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नागिन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से हमें लिखा है लाल फतेह चंदानी, लीरा फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुन रहे थे आप, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और जिसके बोल लिखे थे जमीर कासमी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रजनीगंधा से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका पूरा परिवार। और इसके अलावा एक और पत्र हमारे पास आया है जिला नांदेड़ से, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंतले और आरती जोंतले का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है यह अगला गीत।

सलिल चौधरी का संगीत, योगेश के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रजनीगंधा से। और ये है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अगला गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म परिचय से, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसके अलावा पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री ने भी हमें फरमाइशी पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप श्रोताओं के लिए यह अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परिचय से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में फिल्म निगाहें से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है बजरंगी रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास जिला सागर से। लक्ष्मण रखवार, विनीता रखवार, वैशाली, वैष्णवी, अनरत रखवार, हल्ले, लल्लू और साथी ऋषि रखवार और बंडा की ओर से। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, वो है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की ओर से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की ओर से। तो लीजिए अगला गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निगाहें से। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपने पत्रों का सिलसिला जारी रखिए और हमें भेजते रहें अपने पत्र अपनी फरमाइशों के साथ। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंगूभाई पटेल ने की। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है और प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी आज शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार, और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
1: राजू जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजू जी?
0: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं।
1: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
0: हाँ
1: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है कि बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है। तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती
0: तो
1: है।
0: ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज़ बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई, जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे।
1: बस इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
1: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपने अपने साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बुज़ुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आम तौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
0: हाँ
1: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
0: एक
1: के
0: एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
1: हाँ, तो
0: तो
1: ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो
0: अरे,
1: जाते
0: कुछ
1: हैं।
0: बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
1: हाँ
0: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो
1: तो उनके
0: पता चला
1: खिलौने में
0: खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
1: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का
0: हाँ
1: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना
0: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब
1: जी।
0: कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते
1: माता पिता पानी पानी हो जाओ, यानी यूं
0: हैं।
1: कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं
0: पोल खोल देते हैं, सही
1: सबके।
0: बात है। वैसे ये सब जो बातें होती हैं ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
1: तो मजा आ
0: तो
1: जाता है।
0: मजा आ जाता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे ए,

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: यानी झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने माहवारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, माहवारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते।
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना, एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली हैं अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है। पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, पर उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से डिज़ाइन की शिक्षा प्राप्त की।
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या हो
0: क्या होगी, बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो BBC की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज़ उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: और,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे,
1: जी
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने ज़माने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस ज़माने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की ज़रूरत होती थी, इसलिए उस ज़माने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चलें। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए, और जो पैड्स वगैरह है उसे भी समय समय पर बदलना बहुत
0: जरूरी
1: है। और अब तो
0: इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गाँव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब हाँ कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है। तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती हैं,
0: प्रूव करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है।
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते हैं, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहाँ पहुँच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे,
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
0: हाँ, और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
1: हाँ
0: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है, या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी
0: हाँ,
1: चीजें मम्मी की, तो ये जो मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे
0: बिल्कुल।
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है, और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं, उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है, और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए,
0: ओ
1: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम ही नहीं
0: नाम
1: लेती।
0: नहीं लेती, और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
1: हाँ
0: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी ओ मेरी ओ

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: सहेली
1: और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था, और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा।
0: ओ
1: पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी। वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें
0: हाँ,
1: सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: ये
1: दिया था।
0: बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता
1: बहुत
0: है,
1: ज्यादा
0: चोट
1: खतरा।
0: भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया। हाँ, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। ओ, तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया करो।
1: हाँ, कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था, और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला, अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट
0: अरे
1: देगा।
0: बाप रे।
1: यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं, इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये
1: जी
0: भी सीखते हैं। तो बस नज़र रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा
1: खोल लिया
0: पुर्जा बराबर कर देता था।
1: उसने।
0: उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको
1: खोल
0: उसको
1: देता
0: चाहिए
1: था।
0: पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: इंजीनियर बना।
1: जी।
0: तो
1: तो
0: भाई
1: यानी
0: ये कुछ चीजें
1: उन्हें
0: होती है।
1: रोके टोकिए मत कि आपको लगता है कि भी इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना, एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना, जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनके उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना, ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते
1: वो
0: हैं,
1: लगा सकते
0: बिल्कुल
1: हैं, या फिर ऐसे कुछ।
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो
1: हाँ वो
0: लगा
1: लगा
0: दें,
1: दे।
0: और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत
0: तो
1: होती है।
0: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चुकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं।
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने।

0: सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहाँ गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो
0: हाँ
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है,
1: और एक है
0: अकेलापन
1: ना,
0: नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं
0: बिल्कुल
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूत ज्यादा प्यारा
1: प्यारा
0: होता
1: होता
0: है
1: है।
0: कहा भी जाता है। तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पाल कर, वो भी काम आता है।
1: बहुत काम आता है, पर अभी परिस्थितियां थोड़ी बिकट
0: अलग हो
1: होने
0: गई
1: लग
0: है।
1: गई है।
0: हाँ
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग

0: दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे। अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फ़ोन में और टीवी में मिल जाता है। दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है। और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं, उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
1: बिल्कुल
0: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है ये।
1: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
0: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने ज़माने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज़ ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। पर पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे। तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर, पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नज़र आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुज़ुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा, खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित

0: दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है, जो आजकल बेहद कम हो गया है।
1: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट। आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्डहुड। विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
0: क्या बात है।
1: तो भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप
0: जो
1: कर
0: रह
1: लेते
0: गया
1: हैं,
0: है।
1: हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है,
0: जी
1: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता। बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है
0: पर
1: उनके
0: अगर
1: पास।
0: ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं, तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
1: दोनों
0: चाहिए।
1: तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की ज़रूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है ना।
1: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: सुनते हैं गीत।
2: ओ सजन

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है
0: हाँ सही बात है।
1: आपकी। वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती
0: हाँ
1: है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये
0: सही
1: सचमुच
0: बात है, बच्चे
1: बच्चे
0: पोल खोल देते
1: बहुत
0: हैं।
1: पोल खोलते हैं।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब
1: उसने
0: पिताजी
1: बता
0: बिल्कुल,
1: दिया।
0: हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते
0: सब पोल
1: हैं,
0: खोल दी।
1: सब पोल खोल दिया अंदर से। पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने
1: हाँ,
0: काम का मतलब यही
1: ये
0: समझा
1: समझा
0: कि हम,
1: कि
0: माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो अब टाइम हो रहा है, हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने
0: सच
1: वाली।
0: में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है। उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें, और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई कई बार ऐसा होता है कि माएँ कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा
0: सब
1: लिया।
0: खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
1: जी।
0: वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज़ खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने कि भाई डायबिटीज़ है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख
0: देख
1: ली।
0: लिया तो पानी पानी हो गए।
1: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर पर लज्जित हो गए हैं ना, तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफ़ी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया, जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मज़ा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 इंतजार है तेरी। फिल्म मुल्क,
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़,
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: ए बेखबर।
4: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
4: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
5: हाँ,
4: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
5: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
4: तो मुल्क के, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
5: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
4: जी,
5: बहुत अच्छा गाना है,
4: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
5: हाँ,
4: कव्वाली,
5: यस यस,
4: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
5: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
4: जी बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
5: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
4: जी,
5: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो

0: ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी,
1: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
0: जिक्र
1: ये
0: किया
1: दर्ज होती हैं आज के समय में।
0: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
1: बिल्कुल,
0: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
1: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था कि शकील आज़मी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
0: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: आर्टिकल 15 से,
1: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
0: उस गाने की कहानी ये है कि
1: कोई दिलचस्प बात हो तो
0: हाँ, दिलचस्प दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
1: पड़ा है इजाज़त फिल्म
0: लौटा दो, हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
1: अरे क्या बात है,
0: उल्टा मतलब कि
1: तो, सामान देना है।
0: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो,
1: हाँ,
0: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ,
1: हाँ,
0: ठीक है,
1: संचय करना,
0: हाँ,
1: है यहाँ पर,
0: हाँ। तो उसमें जो गाना है,
1: हाँ,
0: वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
0: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ, वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
1: जी।
0: हाँ,
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
1: क्या बात है, वाह,
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी, तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं, तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
1: रंगी है,
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी,
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियाँ होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफ़र। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी हैं शूटिंग में,

0: ध्यान उधर लगा हुआ है। कह रहे मैं बताता हूँ, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उनका फ़ोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग
1: जी,
0: बनता है
1: जी।
0: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
1: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
0: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
1: जी, जी, जी।
0: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
1: जी।
0: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
1: बेहतरीन फिल्म थी,
0: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
1: जी।
0: तो मैंने लिखा उसमें कि पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
1: सात रंग हैं सातों पिया के,
0: हाँ सात रंग होते हैं
1: जी।
0: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी है ना,
1: दो अर्थी,
0: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
1: रंग दिखाई,
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिल के भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भाई
0: में उजली,
1: वा वा।
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
1: जी जी।
0: और तू भी लगा के देख कभी, तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा
1: हाँ
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और
1: जी
0: कंपोज भी किया है गाना।
1: जी
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब
0: आपके
1: आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं, और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, और आपकी
1: जी
0: फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा
1: जी
0: योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है,
1: हाँ
0: बताएं।
1: प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा
1: है
0: भट्ट,
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले
0: जी
1: करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें,
0: हाँ
1: और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया।
0: हाँ
1: जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना,
0: जी,
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात
1: है
0: है।
1: ना। हाँ वो
0: हाँ
1: जो वो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उन गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो
1: जी
0: गाना था,
1: जी
0: अगर तुम मिल जाओ,
1: जी
0: बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था ये, उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज़ में भी आपको मिल जाएगा वो गाना,
0: जी
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं। और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूज़िक कंपनी ने इसके गाने रिलीज़ किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई,
0: मिली थी।
1: उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी। सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को।
0: जी
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर, है
0: जी जी जी
1: ना। तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी जी
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊँ कहाँ, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी,
1: जी,
0: तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को,
1: आई बेखबर।
0: सुनते हैं
1: हाँ
0: ये गाना।

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गज़लें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गज़लों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गज़ल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गज़ल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गज़लें और पंकज उदास साहब की गज़लें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गज़ल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर ख़त्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गज़ल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आज़मी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गज़लें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोज़र हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे और मैं उनके अंदर वो म्यूज़िक कंपोज़र को, जो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज़र होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ,
0: और
1: 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
1: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी,
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई।
0: हाँ,
1: दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
0: वहाँ तनवीर खान भी के
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो मैं वहीं आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए, तो तनवीर खान साहब की नज़र उस किताब पर पड़ी
0: जी।
1: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
0: अब भी सोते में ऐसा

0: लगता है, क्या बात है।
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओ क्या बात है।
1: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आया। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा, आपको भेज दूँगा। अच्छा मैं उनको फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे, तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी। और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: ओह क्या
1: हाँ,
0: बात है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे,
0: जी जी
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में।
0: जी
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग वीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी ज़माने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी।
0: जी
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे,
0: जी,
1: बाद में डायरेक्टर भी
0: जी,
1: बने।
0: जी, जी.
1: तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फ़ोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे, और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गज़ल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
0: क्या बात है।
1: तो वो तेरा नाम था इसी गज़ल से लिया गया था।
0: अच्छा क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
1: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना, पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मदोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले। तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आज़ाद हुआ है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहाँ के बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है।

0: तो ये सिचुएशन थी
1: जी
0: और
1: जी
0: फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो
1: जी
0: जो
1: जी
0: राइटिंग है, और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फ़ोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना,
1: जी
0: दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है, ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने।
1: हाँ
0: तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से,
1: कि मुझे
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं
1: क्या
0: गवाया।
1: व्यवहार, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था
0: हाँ, तो
1: जी।
0: ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको।
1: जी
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है,
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा
1: वाह बहुत खूब।
0: है। आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर
1: हाँ,
0: ये सुबह इसी गाने से होती है,
1: क्या
0: डेली
1: बात
0: ये
1: है।
0: गाना बजता है। हाँ,
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मधोशी है मधोशी है।

श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजना चाहते हैं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। प्रारंभ में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है और सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस साल 30 जून निर्धारित की गई थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी द्वारा प्रसारित युवाओं के दिलों की धड़कन और आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और भोपाल की इन बदलती फिजाओं का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। लगता है गर्मियों ने अब खामोशी से विदा लेने की ठान ही ली है और सावन ने भी अपनी आहट ठंडी हवाओं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ भेजनी शुरू कर दी है। तो कार्यक्रम में और आगे बढ़ने से पहले आइए इस बदलते मौसम के नाम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

साथियों, क्या कभी आपने रात के शांत आकाश को निहारते हुए यह सोचा है कि जिन अनगिनत तारों को हम टिमटिमाता हुआ देखते हैं, उनके बीच ऐसे भी पिंड मौजूद हैं जो करोड़ों वर्षों से अंतरिक्ष में अपनी अनवरत यात्रा पर हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। हर वर्ष 30 जून यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और इस दिन को चुनने का कारण है 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुई तुंगुस्का घटना, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह या उसके अवशेष के वायुमंडल में विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र नष्ट हो गया। यह पृथ्वी पर दर्ज सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न भी आ सकता है

कि आखिर शूद्र ग्रह होते क्या हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये चट्टानों और धातुओं से बने ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ शूद्र ग्रह अपनी कक्षा बदलकर पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट भी आ जाते हैं। अधिकांश बिल्कुल सुरक्षित दूरी से गुजरते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इन पर नजर रखते हैं ताकि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे का समय रहते आकलन किया जा सके। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाने का उद्देश्य डर पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना है। आज विश्व भर के अंतरिक्ष एजेंसियां आधुनिक दूरबीनों और उन्नत तकनीकों की सहायता से लाखों शूद्र ग्रहों का अध्ययन कर रही हैं। उनका आकार, उनकी गति, उनकी कक्षा और पृथ्वी से उनकी दूरी, हर पहलू पर लगातार शोध किया जा रहा है। यही शोध भविष्य में हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात को खुले आसमान की ओर देखें तो सिर्फ तारों को ही मत देखिए, उस अनंत ब्रह्मांड की कल्पना भी कीजिए जहां हर क्षण कुछ नया घटित हो रहा है और जहां मानव की जिज्ञासा ही उसे निरंतर नई खोजों की ओर अग्रसर करती है।

0: अभी आपने मोहित चौहान की मधुर आवाज में जब वी मेट फिल्म का लोकप्रिय गीत तुम से ही सुना। इस गीत के बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम जल संरक्षण जैसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं वाणी शर्मा द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच विषय पर एक रोचक और विश्व विचार उत्तेजक वार्ता।
1: नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। जब शब्द नहीं थे

जब भाषा नहीं थी, जब सभ्यताओं के नाम तक नहीं थे, तब भी एक लय थी, एक स्पंदन, एक कंपन, एक दिव्य गति, और उसी गति से जन्मा था सृष्टि का नृत्य। भारतीय चिंतन कहता है कि यह ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह निरंतर गतिमान है। नक्षत्र घूम रहे हैं, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, श्वास चल रही है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि स्वयं एक नृत्य है। और इस विराट नृत्य के अधिष्ठाता हैं श्री महादेव नटराज जी। कहा जाता है कि जब नटराज जी ने अपने आनंद तांडव की पूर्णता पर डमरू का निनाद किया, तब वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्ति थी, जिससे 14 माहेश्वर सूत अ ई ऊन रिलिक एऊं एऊच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ धश जब गड़ धश खफ छट थ चट तव कपय शश सर हल प्रकट हुए। विचार कीजिए, जिस संस्कृति ने नृत्य को केवल गति का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे ध्वनि, भाषा, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उत्पत्ति से जोड़ दिया हो, उस संस्कृति का शास्त्रीय नृत्य स्वाभाविक रूप से सीमाओं में कैसे बंध सकता है? शायद इसी कारण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जन्म किसी रंगमंच पर नहीं हुआ, उसका जन्म चेतना में हुआ। और जो कला चेतना में जन्म लेती है, वह भूगोल की सीमाओं में नहीं रहती। इसीलिए आज जब भारत का शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर पहुंचता है, तो वह केवल घुंघरुओं की ध्वनि नहीं ले जाता, वह अपने साथ सहस्राब्दियों की सांस्कृतिक स्मृति, दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक दृष्टि भी लेकर जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल शरीर की गति नहीं है, यह नृत्य है जहाँ लय और ताल का शुद्ध सौंदर्य प्रकट होता है। यह नृत्य है जहाँ गति भावनाओं से संवाद करती है। और यह नाट्य है जहाँ संपूर्ण जीवन मंच पर जीवंत हो उठता है। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी विदेशी दर्शक को संस्कृत का एक भी शब्द न आता हो, यदि उसने कभी रामायण न पढ़ी हो, यदि वह श्री राधा, कृष्ण, शिव या पार्वती के नामों से भी अपरिचित हो, फिर भी यदि किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के अंत में उसकी आंखें नम हो जाएं, तो यह केवल कला की सफलता नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक विजय है। गीतेन प्रियते देवो, नृत्येन प्रियते जनः, उभाभ्याम प्रियते लोको, धर्म कामार्थ सिद्धये। गीत से देवता प्रसन्न होते हैं, नृत्य से जनमानस प्रसन्न होते हैं, और दोनों मिलकर संपूर्ण लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि लोक मंगल है। और जब कोई कला लोक मंगल से जुड़ जाती है, तब वह समय और भूगोल की सीमाओं से परे चली जाती है। यही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक सफलता का रहस्य है। उसने कभी अपनी जड़ों को त्याग कर विश्व को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। उसने स्वयं को बदल कर नहीं, स्वयं को समझ कर विश्व का सम्मान प्राप्त किया। और यही किसी भी संस्कृति की वास्तविक शक्ति होती है। वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान को इतना प्रखर बना देना है कि संपूर्ण विश्व उसे समझना चाहे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने विश्व को केवल अपनी कला नहीं दिखाई, उसने विश्व को भारतीय दर्शन का परिचय कराया। उसने बताया कि शरीर भी प्रार्थना कर सकता है, मौन भी बोल सकता है, गति भी ध्यान बन सकती है, और नृत्य भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है।

अंततः भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर मात्र नहीं है, यह मानवता की साझा चेतना की धरोहर है। यह उस सत्य का साक्ष्य है कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं जीता, वह सौंदर्य, संवेदना और आध्यात्मिकता से भी जीता है। गंगा के तटों पर विकसित कथक से लेकर तमिल भूमि के भरतनाट्यम तक, उड़ीसा की त्रिभंगीमयी ओडिसी से लेकर आंध्र की कुचिपुड़ी तक, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम से लेकर मणिपुर के कोमल मणिपुरी तथा असम के आध्यात्मिक सत्रिया तक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रत्येक धारा अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ एक ही सांस्कृतिक महासागर में प्रवाहित होती है, और वह महासागर है भारतीयता। जब 20वीं शताब्दी में विश्व तेजी से बदल रहा था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत को रहस्य और रोमांच की भूमि के रूप में देखता था, परंतु कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने विश्व को बताया कि भारत केवल रहस्य नहीं, एक परिष्कृत सांस्कृतिक सभ्यता है। इन अग्रदूतों में प्रमुख नाम था श्री उदय शंकर जी का, जिन्होंने पश्चिमी मंचों पर भारतीय नृत्य की आत्मा को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय नृत्य संग्रहालय की वस्तु नहीं है, वह जीवित है और वह विश्व से संवाद भी कर सकता है। फिर आई श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से भारतीय नृत्य विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सांस्कृतिक विमर्श का विषय बना। इसके बाद श्रीमती यामिनी कृष्णमूर्ति जी, श्रीमती मृणालिनी साराबाई जी, श्री बिरजू महाराज जी, श्रीमती सोनल मानसिंह जी, श्री केलुचरण महापात्र जी जैसे महान कलाकारों ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय नृत्य केवल परंपरा नहीं बल्कि उच्च कोटि की कलात्मक बौद्धिकता है। आज विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारतीय नृत्य पर शोध हो रहे हैं, वैज्ञानिक ताल और गणित के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रस सिद्धांत को मानव भावनाओं की गहनतम व्याख्या मान रहे हैं तथा आध्यात्मिक खोजी नृत्य को ध्यान की एक विधि के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भारतीय नृत्य में गणित भी है, दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी है। जब कथक का कलाकार 16 मात्रा के चक्र में घूमता है, जब भरतनाट्यम की रेखाएं ज्यामिति का जीवंत रूप बनती हैं, जब उड़ीसी की त्रिभंगी मानव शरीर को मूर्ति कला में बदल देती है, तब दर्शक केवल नृत्य नहीं देख रहे होते, वह समय, स्थान, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को देख रहे होते हैं। आनंदादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति भी संविशन्ति। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीते हैं और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य उसी आनंद की यात्रा है, उसी अनंत लय का स्पर्श है, उसी दिव्य संवाद का माध्यम है जो मानव को मानव से और मानव को परमात्मा से जोड़ता है। आज जब भारतीय शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर अपने चरण रख रहा है, तब वह केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वह संपूर्ण मानवता को यह स्मरण करा रहा है कि प्रगति और परंपरा विरोधी नहीं है, आधुनिकता और आध्यात्मिकता शत्रु नहीं है, और कला वह पुल है जिस पर चलकर संसार एक दूसरे को समझ सकता है। तो आइए इस अनंत परंपरा को प्रणाम करें, उन गुरुओं को प्रणाम करें जिन्होंने इसे जीवित रखा, उन कलाकारों को प्रणाम करें जो इसे विश्व तक ले गए, और उस दिव्य लय को प्रणाम करें जो युगों से सभी प्राणियों को नचा रही है। यतो हस्तस ततो दृष्टिर, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस

ततो भावो यतो भावस ततो रसः, अर्थात जहाँ हाथ जाते हैं वहीं दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन एकाग्र होता है, जहाँ मन होता है वहीं पवित्र भाव का

अनन्या शर्मा द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच विषय पर आपने सुनी ये वार्ता। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। दोस्तों, कभी आपने ठहर कर बहुत शांति से जल की एक बूंद को आसमान से गिरते हुए देखा है? वह बूंद जो धीरे धीरे धरती को छूती है और उसी क्षण जीवन की अनगिनत कथाएं अपने भीतर समेट लेती है। आज की इस प्रस्तुति में हम उसी जल की बात करेंगे जो केवल हमारी प्यास का निवारण नहीं बल्कि हमारी समस्त सृष्टि का आधार है। वह जल जो आज के इस तीव्रगामी युग में एक साधारण आवश्यकता से बढ़कर एक अनिवार्य चेतावनी बन चुका है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विकास की दौड़ ने हमें ऊंचाइयां तो दी हैं पर कहीं ना कहीं हमारी जड़ों से हमारा संबंध शिथिल कर दिया है। हमने आकाश को छूने की इस आकांक्षा में धरती की नमी को शायद अनदेखा कर दिया और शायद यही वह विसंगति है जो आज जल संकट के रूप में हमारे सामने खड़ी है। पृथ्वी पर जल का विस्तार वैसे तो असीम प्रतीत होता है, किंतु जब बात आती है उस जल की जिसे हम पी सकें, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकें, तो वह अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। नदियां जो कभी कल कल करती हुई जीवन का गीत गाती थीं, आज अनेक स्थानों पर केवल स्मृतियों में सिमटती जा रही हैं। तालाब जो गांवों की आत्मा हुआ करते थे, अब केवल मानचित्रों में खोजे जाते हैं। और धरती, वह धरती जो अपने भीतर अनंत जल संजोए हुए थी, आज स्वयं प्यास की पीड़ा सहने लगी है। यह केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, यह हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब है। परंतु अभी भी समय की धारा पूर्णतः विलीन नहीं हुई है। अब भी हमारे हाथों में वह सामर्थ्य है जिससे हम इस प्रवाह को मोड़ सकते हैं। यदि हम चाहें तो हर गिरती हुई बूंद को एक संचित धरोहर बना सकते हैं। यदि हम सचेत हों तो अपने दैनिक जीवन में जल के संयमित उपयोग को एक संस्कार बना सकते हैं। यदि हम संवेदनशील हों तो प्रकृति के साथ एक संतुलित संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं। यह परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, यह एक सामूहिक संकल्प है, एक मौन प्रतिज्ञा है जो प्रत्येक युवा के हृदय में, विचारों में और क्रिया में परिलक्षित होना अति आवश्यक है। यदि आज हमने इस सत्य को आत्मसात कर लिया तो आने वाला कल केवल सुरक्षित ही नहीं, संवेदनशील और समृद्ध भी होगा। और यदि हम चूक गए तो शायद वह समय भी दूर नहीं जब जल की एक बूंद केवल आवश्यकता नहीं, एक विलासिता बन जाएगी। इसीलिए आइए हम इस क्षण को केवल विचार का नहीं, संकल्प का क्षण बनाएं। अपने भीतर ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करें कि जल को बचाना दरअसल जीवन को बचाना है, क्योंकि अंततः जल ही जीवन है और जीवन हमारे हाथों में है।

प्रिय श्रोताओं, अगर आप या आपके परिवार में कोई युवा नौकरी की तलाश में है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद कारगर है। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, लीगल ऑफिसर सहित अनेक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद के अनुसार इंजीनियरिंग, विधि, फार्मेसी, विज्ञान अथवा स्नातक एवं स्नातोत्तर निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जुलाई 2026 तक यूपीएससी के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल ORA के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विभिन्न संस्थानों में जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट तथा पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित पदों के लिए BE, BTech, ME, MTech अथवा विज्ञान में स्नातोत्तर योग्यता निर्धारित की गई है। विभिन्न विज्ञापनों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथियां 12 जुलाई, 15 जुलाई एवं 21 जुलाई 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बातों ही बातों में पता नहीं लगा लेकिन आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आशा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में आपने कुछ नया सीखा होगा। दिस वॉज योर रेडियो दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। सी यू सुन, सुनते रहिए युववाणी।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।
1: संस्कृत ज्ञान, भारतीय परंपरा और वैदिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आज उज्जैन की पावन धरती एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनी। कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल ने की, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सहित देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, संत और विद्वान इस अवसर के सहभागी बने। दीक्षांत समारोह में जहां विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया, वहीं PhD, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गई। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण एवं रजत पदकों से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और वैदिक मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन का संदेश इस समारोह ने पूरे शिक्षा जगत को दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: व्याकरण शास्त्र के प्रणेता, शब्द ब्रह्म के उपासक महर्षि पाणिनि के पावन नाम प्रस्थापित विश्वविद्यालय का दीक्षांत केवल उपाधि वितरण का प्रयास प्रसंग नहीं है, अपितु संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा के नई पीढ़ी के सौंपने का पवित्र अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के साक्षी पालकों एवं आचार्य और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 3,959 सूत्रों में पूरी भाषा को नियमबद्ध किया, उसी प्रकार आप सभी स्नातकों भावी जीवन में अपने ज्ञान, अनुशासन और चरित्र के राष्ट्र और समाज के संस्कारित आपको करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और गर्व करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संस्कृत को केवल पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा नहीं माना, बल्कि इसे विज्ञान, दर्शन, गणित, कला और आधुनिक तकनीक के वाहक के रूप में मान्यता दी है। यह नीति त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से संस्कृति को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक मुख्य धारा में लाने का एक सशक्त रोड मैप प्रस्तुत करती है। अब समय आ गया है कि संस्कृत को संग्रहालयों की प्राचीन लिपियों से बाहर निकलकर आधुनिक अनुसंधान के जीवंत भाषा बनाए। विश्वविद्यालय से अपेक्षा है कि भारतीय ज्ञान की प्रणाली का दुनिया में प्रचार के लिए संस्कृत के ज्ञान विरासत को आधुनिक भाषा में प्रचार करे। मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी सारे हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है हमारे को 2047 में विकसित भारत जो बनाना है। तो ऐसे पुराने जो हमारे संस्कार है, पुराने जो प्रकृति की जो हम पूजा करने वाले हैं, ऐसा समाज हम तैयार करेंगे तो सही दिशा में हम विश्व गुरु बनेंगे। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, ऐसे अपेक्षा के साथ भारत माता की जय।
1: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने सभी दीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देने के

0: साथ कहा।
1: आज जिस विश्वविद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से जिस भाव के साथ मैं समझता हूँ की गई थी, इस दीक्षांत समारोह से उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई हम सबको दिखती है। आज जिन भी बंधु भगनी को उपाधि मिली है, मेडल मिले हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन जैसा कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा का एक पड़ाव है, लेकिन आगे जो चुनौतियाँ हैं उनको सबको स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। हमको अपने देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के उस ज्ञान को जिस ज्ञान के आधार पर हम दुनिया में कभी विश्वगुरु कहलाते थे, फिर से विश्वगुरु बनने का संकल्प यदि हम सब में है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। और विश्वगुरु बनने के वाहक के रूप में आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब बनने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने विशेष रूप से सभी विषयों के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रमों में सिलेबस में लागू कर दिया है, उस अनुसार पुस्तकें बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारत के शास्त्रों के बारे में ही केवल पढ़ाने का विषय होगा, ऐसा नहीं है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र ये सारे हैं जिनमें कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, और इसलिए उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज के सामने रखना। लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में भी क्या भारतीय वैज्ञानिकों का भारतीय समाज में जो परंपरा है, क्या वो वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज के सामने आज आने लगा है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जब गर्व करने का विषय कभी हमारे सामने आता है तो मैं कई जगह उदाहरण देता हूँ। मैथमेटिक्स में तो दुनिया में सबसे अग्रणी हम ही रहे, और भारत के दर्शन में सभ्यता में जो भूगोल शब्द का वर्णन होता है, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी पृथ्वी गोल है, ये हमारे देश के शब्द है। और इसलिए भारत के विद्यार्थियों के मन में गणित के प्रति जो अथाह विश्वास और का भाव होना चाहिए, वो निश्चित रूप से हमको विश्व विजेता की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएगा। ऐसे कई सारे विषय भारतीय समाज में, विज्ञान की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, परंपरा है, पर क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में एक भाव पैदा कर दिया कि आपके पूर्वज तो अंधविश्वासी थे, आपके पूर्वज तो रूढ़िवादी थे, और उस कारण से हमने हमारे अच्छे चीजों को भी, वैज्ञानिक चीजों को भी, विज्ञान के आधार पर समाज में स्थापित की चीजों को भी छोड़ने का क्रम बना लिया, या छोड़ा नहीं तो चुपचाप करने का क्रम बना लिया। मैं एक उदाहरण के साथ आप मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत के समाज में, हमारी सभ्यता में प्रकृति के साथ जो विशेष प्रेम है, स्नेह है, और उसके प्रति हम जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और दुनिया में जो आज झगड़ा चल रहा है, लोग ईरान अमेरिका जैसे झगड़ा चल रहा है, काय के लिए झगड़ रहे, ऊर्जा के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, ये भी तेल भी जमीन से जो निकलता है, ये भी कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से ही कन्वर्ट हुआ है, और जो कोयला है वो भी जमीन में है, कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ है। और इसलिए हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने उस वैज्ञानिक पक्ष को हमारे समाज में, मान्यता में, निरंतर परंपरा में उसको आगे बढ़ाया है। और इसलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने, देश के सामने भी है, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब 2047 यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, समाज में कई सारे लोग जिसको विश्वगुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वो विकसित गुरु भारत, विश्वगुरु भारत जब बनेगा, तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सूर्य की ताकत पर, हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान के ताकत पर भारत दुनिया में ऊर्जा का केंद्र बनेगा। और केवल हमारे देश की ऊर्जा की पूर्ति करने वाला देश नहीं होगा, हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष होने वाला है कि 2047 का भारत दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत बनेगा, क्योंकि इस देश के किसान अपनी भारत माता से, अपनी वसुंधरा से जो अनाज उत्पादित करेंगे, वो केवल भारत के लिए नहीं होगा, वो दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत होगा, क्योंकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को स्वीकार किया है। जय तु भारतम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
0: कार्यक्रम में माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर व्यास ने अतिथियों के स्वागत में कहा।
2: मित्रों, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय की एक इस यात्रा में इस विश्वविद्यालय

0: विद्यालय को विगत पर्याय में नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसी सत्र में अभी 8 जून को अभी इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12B का परीक्षण इस विश्वविद्यालय का संपन्न हो गया है। हमारे इस विश्वविद्यालय के 12B होने के बाद जो हमारी संभावनाएं बढ़ी हैं वो ये है कि हमें ODL संचालित करना है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हो सके। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 14 विद्याएं और चतुष्षष्ठी कलाएं, इनका स्वरूप आना चाहिए समाज के सामने। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय इन दिशाओं में बहुत सार्थक प्रयास करेगा और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार माननीय कुलाधिपति जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, दोनों सांसद सदस्यों का, माननीय सारस्वत अतिथि वरखेड़ी जी का और मानद उपाधि पाने वाले पांडे जी का तथा मंच पर विराजमान समस्त कार्य परिषद सदस्यों का, संकाय अध्यक्षों का, विद्या परिषद सदस्यों का, साधारण परिषद सदस्यों का, समागत समस्त अतिथियों का भूयो भूया स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम इति उक्त्वा विरमामि, धन्यवादः।
1: कार्यक्रम के माननीय सरस्वत अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने कहा,
2: माननीय कुलपति महोदय तथा सभी साधारण सभा और विशिष्ट सभा और प्रशासन मंडल के सभी सदस्यों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ, आज दीक्षांत हो गया, हमारा पूर्ण उपाधि प्राप्त हो गई, लेकिन पूर्ण उपाधि का वास्तविक अर्थ समाज देगा, क्योंकि आज केवल हमने प्रमाण पत्र दिया है। यहाँ के माननीय कुलाधिपति ने अपने अधिकार से विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको एक उपाधि प्रमाण पत्र दिया है। हम सबको जानकारी है उपाधि पत्र के प्रथम पृष्ठ में उपाधि का नाम होता है, हमारा ग्रेडिंग होता है, लेकिन उपाधि के पृष्ठ में खाली पत्र होता है, रिक्त पत्रे समाज लिखति, प्रमाण पत्रे कुलपति हस्तांकनं करोति, परंतु रिक्ते प्रमाणपत्रे रिक्तस्थाने समाजः रिक्तस्थानं पूरयिष्यति, उस रिक्तस्थान में ये इस उपाधि के लिए अर्ह है, ये उपाधि के लिए प्राप्त है, उपाधि के लिए पात्र है, और उपाधि प्राप्त होने के बाद यह वास्तविक रूप से समाज के लिए उपकारी है, ऐसे समाज जब निर्णय करेगा तभी सब प्रमाण पत्र का पूर्णता प्राप्त होगी। आप सबसे उपाधिधारक स्नातक धारकों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, इस दीक्षांत समारोह के बाद पश्चात निरंतर शिक्षा का आरंभ हो जाए और वास्तविक रूप से समाज से आप प्रमाण पत्र स्वीकार करिए। हमारा धर्म होगा केवल हम शिक्षा से विभूषित नहीं है, यदि हमारे मन में केवल सनातन धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, अध्यात्म भक्ति नहीं है, संस्कृति का हमारे गंध नहीं है, और शास्त्र और कवित्व प्रतिभा के साथ यदि समस्त विद्याओं के प्रति हमारे धारणा नहीं है, तो हम वास्तविक रूप से उपाधिधारी नहीं हैं। इसलिए आज इस उपाधि के साथ अध्यात्मनिष्ठा, सनातन धर्मनिष्ठा, कवित्व शास्त्र प्रतिभा, संस्कृति और समस्त विद्या का प्रतीक के रूप में हमारी पूजा होती है, इसलिए इन सारे विद्याओं का धारक के रूप में हमारा दायित्व भी है। मेरा दायित्व है, मेरे भारत का धारक हूँ मैं, तो भारत का धारणा शक्ति मेरे मुझ में है, इसलिए इस भावना के साथ हम सबको कार्य करना है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा केवल शास्त्र स्मृति से काम नहीं चलेगी, शास्त्र रक्षा भी होनी चाहिए और शास्त्र कृषि भी होनी चाहिए, शास्त्र का अनुभूति भी होनी चाहिए और शास्त्र दृष्टि के साथ अभिनव शास्त्र सृष्टि भी होनी चाहिए। सभी को, छात्रों को यही आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों से मैं वचन समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, प्रणामः।
1: दीक्षांत समारोह में स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को महामहोपाध्याय डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी शोधार्थियों से कहा,
3: भगवान महाकाल की कृपा है, भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि हम लोगों ने एक युग देखा जब 370 धारा हट गई, हम लोगों ने यह देखा भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, हमने ये देखा कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनः उद्घोष हमारी शिक्षा पद्धति में आरंभ हुआ। यह मंच आपको कह रहा है, निमित्त मात्र बन जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ, भविष्य काल हमारा है, हम उसको करके दिखाएंगे। कितना भी चुनौती भरा समय होगा तो भी क्या, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी, भारत माता की।
1: ज्ञान संस्कार और परंपरा के संगम बने इस दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों को नई उड़ान और नई जिम्मेदारियों का संदेश दिया है। उपाधियों और सम्मान के साथ आज इन विद्यार्थियों ने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति थी और इसका प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर की बोल हैं और संगीत जतिन ललित का।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को बतलाना चाहेंगे, 6:30 से सुनिएगा, ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय

0: की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है से, यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू, यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो।

0: कुछ देर बैठ जाओ।
1: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय,
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोविंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब, थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
3: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
0: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
4: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
0: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
0: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
0: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
0: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
0: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
0: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो?
0: हुँ?
5: कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ,

0: गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, नहीं जाओगी ना, नहीं जाओगी ना।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं जाऊंगी।

0: from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 6:30 होना चाहते हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल के लिए हम ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you the ball-by-ball commentary of the first semi-final T20 cricket match to be played between Australia and West Indies of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. I'm Sakshi Mandwal, and what may we say? The last 28 days have finally brought us to the first semi-final game that is all set to happen between West Indies and Australia of the ongoing ICC Women's T20 World Cup, all set to be held at the Oval today. In the next 1 minute, we shall be also witnessing the toss, which is all set to happen. But over here, I'm joined by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit. नमस्कार।
4: गुड इवनिंग साक्षी। और यहाँ पर पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हैं आशा रावत, नमस्कार, फॉर्मर इंडिया बैटर।
5: नमस्कार।
4: राकेश राव हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। गुड इवनिंग राकेश।
6: वेरी गुड इवनिंग।
4: और साथ ही बीसीसीआई कोच हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी। नमस्ते। आशा, टॉस होने वाला है 30 सेकंड में, क्या लगता है हेली मैथ्यूज और सोफी मेलोनियो जब टॉस अगर कोई जीतता है तो क्या चॉइस करेंगी?
5: वो बैटिंग के लिए पहले जाएंगे क्योंकि ये जो पिच है ना, और एक जो प्रेशर होता है वो भी सेमीफाइनल का प्रेशर, तो कोई भी वो प्रेशर को वो नेचुरल होता ही है, सबको आता है, तो जो भी जाएगा पहले बैटिंग के लिए ही जाएगा।
4: राकेश,
6: कम्प्लीटली सेम चीज़ है क्योंकि थोड़ा बहुत हरा ज़रूर है लेकिन इट्स फुल ऑफ रन्स।
4: रविंद्र जी
7: आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं क्योंकि जो सेकंड बैटिंग में 10 बार जो लिया उन्होंने, मुझे भी लगता है शायद दूसरा चेज करेंगे।
4: चलिए सीधा केनिंगटन ओवल के मैदान पे चलते हैं लंदन, जहां पर टॉस हो रहा है और दोनों कप्तान ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू और वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज बिल्कुल तैयार हैं।
8: Finals here at the Oval, and we have two of the most skillful and entertaining teams in this ICC Women's T20 World Cup. It's the West Indies up against Australia. I've got the captains next to me. GS Lakmi is match referee, overseeing the coin toss. Sophie Molyneux has the coin. Hayley Matthews will call.
9: Tails.
10: Tails is the call. It's heads.
8: Fall on the way of Australia. So, first of all, congratulations on your 50th T20 International. You've won the coin toss. What are you going to do and why?
11: We're going to have a bowl. Looks like a good pitch to come out here and hopefully put a bit of pressure on early.
8: Did you sort of toss and turn a little bit on the bowling? Is it about 7 to 8 mils out there? Is that what sort of attracted you to it?
11: Yeah, I think so. It does look a little bit bit furrier than yesterday. It's just grown overnight. But yeah, I think so. And just be able to get out here and have a run around first.
8: Big win against India.

0: Any changes to the team at all?
1: No, I've got the same team.
0: Same blueprint then? You come into a big game like that, last of the round games, do you sort of go, right, same approach, or do you say clean sheet up against the West Indies?
1: I feel like West Indies are, you know, an incredible team, and we have to bring our best, and a part of that is being able to play our style of play no matter who we are coming up against.
0: You know this one quite well. Captains and players at the Melbourne Renegades, does that make it easier?
1: Probably not. We were actually just talking about the Renegades before, but, you know, she's always good to play against.
0: There we go. We'll find out in a second. Here we go. Thank you. All the best today.
1: Thanks, Jonesy.
0: Hayley, come on in. Batting first. You happy with that?
2: Yeah, I think it's a pretty good wicket here at the Oval. Not going to change too much. We probably would have had a ball first, but at the same time, we feel like we certainly got nothing to lose and can go out there and play a really fearless brand of cricket.
0: It's been a roller coaster ride for you guys. You had the first couple of wins and then a little bit shaky at the end. What do you bring to this team to say, okay, these are the things that we really need to, you know, knuckle down on, double down on today?
2: Yeah, I think we need to keep believing, one, but at the same time, we just need some of our big players to step up. Myself included, I feel like that's probably what we've missed this tournament, but it still brings out a lot of positives, the fact that we have gotten to this stage without a lot of our big players really making big performances.
0: Looks like a kind of ground, too, that you need a big total on.
2: Yeah, 100%. Definitely a higher par score here, and probably, if not the best, one of the best wickets in England. So we're definitely going to have to get the score up in this first innings. Yep.
0: Big West Indian support here today as well, so you'll have them on your side. All the best today.
2: Thank you.
0: Australia have won the toss today, and they'll be bowling first.
3: So the news from Oval coming right there. Sophie Molyneux, the captain of Australian team, winning the toss and choosing to bowl first, as predicted also by prediction king Ravinder Singh ji. Ravi, aapke paas aati hu. आंकड़े में दिखा रहे थे कि चेस फ्रेंडली विकेट है और आपको लगता है हाई प्रेशर गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये सही निर्णय लिया है आज बॉलिंग करने के लिए?
4: देखिए, मेरे हिसाब से तो फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिछला मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेलते हुए, उन्होंने बहुत बड़ा चेस किया उन्होंने, और अच्छा, बहुत बढ़िया मैच, और वही मुझे लगता है मोमेंटम बना के चलना चाहते हैं. देखिए, ये 20 ओवर्स का जो मैच होता है ना, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है. अब अगर इसमें वेस्ट इंडीज पर प्रेशर रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कितना टारगेट चाहिए, कितना टारगेट सेट करें, और ऑस्ट्रेलिया को पता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कम से कम 180-190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है. और यही प्रेशर उनको, यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज़्यादा प्रेशर तेज खेलने के चक्कर में आप विकेट्स गंवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है. अगर वो वेस्ट इंडीज जीतते, मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए. तो यही मुझे लगता है प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते हैं.
5: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है. वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी. बेथ मूनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी, जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं. एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेरहम, अनबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं. किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन. आशा, कैसे देखती हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को?
6: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए. पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी. अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज़, उसके ऊपर, डी डॉटिन के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा. और जो कैप्टन है उनको तो बहुत, मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदर है, अगर वो कुछ टीम को अगर सेमीफाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो.
3: राइट, आई विल कम टू यू राकेश. सिंस आशा जस्ट नाउ मेंशन दैट वेस्ट इंडीज इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन 3 ऑफ देयर मेन प्लेयर्स, 1 कैप्टन हेली मैथ्यूज, 2nd वी हैव डियांड्रा डॉटन, एंड 3rd ऑफ कोर्स वी हैव स्टेफनी टेलर. मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट इवन बीन एबल टू परफॉर्म थ्रू आउट द सीजन प्रीटी वेल, बट दे आर स्टिल द बिग नेम्स. हाउ मच ऑफ द लोड विल बी रेस्टिंग ऑन देयर शोल्डर्स टुडे टू शाइन एंड प्रूव नाइन prove something for the team, definitely.
7: It becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you, number one. So, and they have only 2 individuals who've crossed 100. So, they have only 2 guys who've scored over you know, like 100 runs. And one of them happens to cross 150 as well. Now, when you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board, and form is not in your favor. So, this is a worrying factor for the West Indians. They have a reasonably good attack, but that doesn't mean that they can take the Australians lightly, because Australians in an ICC event, they're ruthless. They come very hard at you.

0: very difficult to beat them here. The only time you can beat them is probably in a league game when they have an off day. And history has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games. And that's why they have such a fantastic record. Six times they have already had two hat-tricks of wins in the same tournament. I mean, in the same event. So I still see that this is Australia's game all the way. And as it has already been said here, that one of the factors that probably influenced the Aussie skipper was the fact that the way they beat India. They chased down a pretty challenging score, and they did that. So it seems to be quite... they've been influenced by that decision.
1: जी बिल्कुल. और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से, तो आप हमें फ़ोन कीजिए. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342108 5. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने पांचों मुकाबले जीते हैं, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस. वहीं वेस्ट इंडीज़ ने आशा पहले तीन मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन अंतिम दो मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो हारे हैं. तो दो लॉसेस के बाद यहाँ आ रहे हैं, कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी?
2: मुझे जहाँ तक लगता है उनको, अगर मैं वैसे बोलूँ तो अपनी, उनको खोने के लिए उनको कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैम्पियन टीम है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने एक बार इसको ले रखा है चैम्पियनशिप को. तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है. अगर वो आज टीम को लेके चली गए, मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुँच जाएंगे.
3: okay. Yes, Amit, I think we have a caller with us on the line. Namaskar, good evening. Kya naam hai aapka? Swagat hai aapka hamare karyakram mein. Bataye kya puchna chahte hai?
4: Namaskar ji.
3: Hamare sare panelists aapko namaskar kar rahe hain. Bataye kya puchna chahte hain aaj aap call karne ke liye?
1: जी शुक्रिया. कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर?
4: देखिए स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है जिस हिसाब से क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है, 20 ओवर में आपको पता कुछ भी. लेकिन ये जो अब वेस्टइंडीज के लिए टारगेट है, वेस्टइंडीज को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर

मुकेश और साथियों की आवाज़ों में अगला गीत है, रचना है भरत व्यास की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हनगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माताजी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरी माई कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जी आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
2: हिंदुस्तानी
3: संगीत।
2: अच्छा।
3: उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
2: हिंदुस्तानी संगीत
3: संगीत सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
2: संगीत विद्वान
3: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे। अच्छा। उसके पास एक साल तक हमने
2: शिक्षा
3: की। वो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजें बंदिश हमको बताए।
2: अच्छा।
3: मेरे आवाज पतला बहुत था।
2: अच्छा।
3: वो तो 3-3 मिनट में एक एक बंदिश में 2-2 ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
2: अच्छा।
3: हम ऐसे छोटा मोटा, कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम हम बीच में हुए, मैं भी गाती थी,
2: स्वर लगाती थी।
3: अच्छा। नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे हो गया मेरे माँ से।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो सुबह सुबह, उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
2: अच्छा।
3: हाँ, कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है,
2: बिल्कुल सही बात।
3: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व के पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
2: उच्च शिक्षा प्राप्त
3: हो पाई।
2: डॉक्टर गंगूबाई जी, आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं, क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
3: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं,
2: बिल्कुल
3: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं। इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं, तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते हैं, स्वर के ज्यादा महत्व देके, स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते, मुझे याद नहीं,
2: मग्न हो जाना।
3: ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
2: क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखती हैं?
3: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
2: अच्छा।
3: गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास इसी में है।
2: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या कहने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए?
3: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहते, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो
2: रियाज
3: करना। हमको तो हमारे गुरु जी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर, सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
2: कहना चाहिए।
3: और बाद में उसका ताने के तरफ एक एक श्वास में कितनी दफे
2: ताने
3: आते हैं, सा नी रा बा पदानीसा ये जो है
2: जी।
3: श्वास बढ़ाते ऐसी इतनी छह दफे सात कितने आते हैं इतने ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में तीन स्वर सारेगा गारेगा इतनी उनके अलग अलग ढंग होता है। बाद में गांधर के बाद मध्यम, मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उसको। हाँ। रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
2: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो वहाँ संगीत की शिक्षा यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
3: बहुत कम हमने तो देखे ही नहीं ऐसे। क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरू होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं
2: जी।
3: साल में एक गायक उसमें से निकलते हैं बहुत कुछ होगा। हाँ।
2: तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
3: वो हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
2: अच्छा।
3: आजकल उनको पता है गंगूबाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी वो जो सुनने वाले वही आते हैं मुझे कोई फरमाशी नहीं करते।
2: अच्छा।
3: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम मराठी गजल ठुमरी हमने मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
2: अच्छा।
3: ये मुझे मेरा ये है वो।
2: अच्छा।
3: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
2: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
3: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना फिर विश्वास से।
2: अच्छा आप इतने राग गाती हैं उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
3: कभी कभी एक एक राग जम जाता है ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है। वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी ही नहीं फिर वो ही जम जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे पसंद।
2: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
3: अच्छा ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वासावली।
2: हाँ।

0: धन्यवाद डॉक्टर गंगूबाई जी।
1: आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रहीं। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर सरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गईं, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। 3 ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देव।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देवबर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद, भैरव और फुलोझानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को भारत आ रही है। ताकाइची 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैंसवा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है।
2: जलगंगा अभियान 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे इस अभियान का एक चरण हो रहा है। अगला चरण भी हम चालू करेंगे।
0: इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
2: सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।
0: जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्रपुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डी.लिट. उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए जीआई टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में डीपीआर तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अदालत से जब्त लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं गिरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रीमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हड्डिया सहित बड़ी संख्या में कोली समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं शिवपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय

और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

साथियों, कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सुनिए कनिका कपूर और विक्की चंदेल की आवाज़ों में। गीतकार संगीतकार भी हैं विक्की चंदेल।

0: तू हेवन की चाबी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका, उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है
1: और तूफान की तरह चली जाती है।
2: आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौन रही है?
1: अरे बिजली बिजली कहाँ कौन थी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
2: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो
1: नहीं तो
2: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
1: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी। बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
2: राजा? कौन राजा?
1: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
2: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
1: लड़का कैसा लड़का, जैसा मेरा राजा है।
2: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
1: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
2: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
1: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बाढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
2: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
1: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
2: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
1: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
2: दीपक? कौन दीपक?
1: हाँ वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
2: सुन कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
1: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
2: नहीं देखा तो क्या हुआ। सुन वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हंसोड़ सा था।
1: अब मैंने गोरा वोरा लंबा उम्बा हंसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
2: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
1: थी? नहीं आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
2: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
1: अच्छा मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
2: कर दिया।
3: भाभी भाभी भाभी वो मतलब भाभी।
2: हाँ।

0: वो आपकी बहन है ना,
1: हाँ।
0: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
0: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
0: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
0: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानती?
0: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई, चल कुछ कहेगा भी?
0: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
0: कहूं? कह तू भाभी। भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया, कह दिया भाभी,
1: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुनगाया करती है।
0: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहेगी, छोड़ उसका ख्याल।
0: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने।
1: अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
0: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
0: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो। प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
0: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुना लेना।
0: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
0: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है।
0: तू छुप जा भाभी।

0: ओह
1: क्या हुआ?
0: शॉक लग गया बिजली का।
1: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
0: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
1: जी
0: नहीं तो कयामत आ जाती।
1: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
0: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानूं, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
1: जी जानता हूँ। जी, जी, जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
0: मैं भी कॉफी को कहा।
1: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
0: जी
1: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
0: हजार हजार किस बात के?
1: अरे हजार हजार बातों के।
0: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
1: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत खास देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
0: ओ
1: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
0: हो सकता

0: ख्वाबों का क्या?
1: एक शेर कहा है, सुना दूं?
0: जरूर।
1: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सजकर

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: आहा, क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते।
0: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज, आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब I love you।
1: लेकिन क्यों?
0: क्यों? क्यों क्या? राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं।
0: पता नहीं? तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो?
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है? लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा, इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ गया।
1: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
1: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करेंगे?
0: कभी नहीं कभी नहीं, तुम मेरे महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूं।

0: होता है यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
1: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान, श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
5: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
7: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0

0: ओ पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शिवांध रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीरजी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

0: जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

आशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा
1: कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज

नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ

तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्य होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भी हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तू प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

0: चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।
1: हम थे।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोले किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

था। आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके

सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नज़र, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबां से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार न हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब न हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजना चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक

0: स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of VBG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometre Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passenger and freight movement in this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 station or cabin on the high-density network and highly utilized network route of Asansol Division of Eastern Railway. The special intensive revision of electoral rules has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute a pre-printed enumeration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in underway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ और 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 11:10 हुए हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। कल सुबह 5:55 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते शुभरात्रि। जय हिंद।

गुड मॉर्निंग सर, ऑन एयर आ रहा है और टाइम चेक कर लीजिए, 5:25 और 1, 2, 3, 4 सेकेंड हुआ है और अलोंसो बूथ की घड़ी में 5:24 और 35 सेकेंड हुआ है। अभी वर्क स्टेशन 1 से सुन रहे थे।

마이크로폰 시작하는 시.